आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हों बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन व प्रस्तुत किया RJ किरने ने।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विकसता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां दिल की बातें करेंगे, दिल से दिल तक का सफर। लेकर आई हूं रेट्रो का एक और अंक, दिल की बात, जहां हम पुराने गीतों के जरिए उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे जो कभी आपके दिल के कोने में छुपके से बस गए थे। दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते, वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते। जाहिर कर दो जज्बात अपने दिले नादान के, मन की बात बोलने में वक्त लगाया नहीं करते।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रू

खामखा ही परेशान हो जाएगा कोई भी शख्स, हर किसी को दास्ताने दिल सुनाया नहीं करते। ख्वाबों में तो तुम मेरी हो चुके हो पूरी तरह, फिर क्यों हकीकत में सामने आया नहीं करते।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: मुझे बताओ कि तुम
2: ये लोग क्या समझेंगे मोहब्बत के वजूद को, क्योंकि लूटने वाले कभी इज्जत कमाया नहीं करते। इश्क में दर्द का भी एक अपना मजा होता है, यूं ही ये दर्द सबको दिखाया नहीं करते।

0: यादों की तिप्स में सुलगा है ये दिल मेरा, हम भी यूं बेवजह नाराज नहीं हुआ करते। तुझसे मोहब्बत मुझे पहले भी था, आज भी है, वरना हर रोज तेरी तस्वीर सीने से लगाया नहीं करते।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना

सोचा आज उनसे अपने दिल की बात कर दूं, लेकिन दिल ने अपना इरादा बदल लिया। कहने को तो बहुत कुछ कहना है, हमने देखा तो उनकी निगाहों ने पर्दा कर लिया।

अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।

दिल की धड़कन भी एक कहानी कहती है, हर धड़कन में छुपी कोई निशानी रहती है, कभी खामोश तो कभी शोर मचाती है, दिल तो बस प्यार का गीत सुनाती है।

0: जिंदगी के इस सफर में कुछ पल आपके साथ बिताए, उन लम्हों की महक दिल में हमेशा बस जाए। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है दोस्तों, पर यादों का सिलसिला कभी ना टूट पाए। छोड़ते हैं आपको एक मुस्कान के साथ, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए जज्बात के साथ एक नए कार्यक्रम में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया RJ किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 MHz से मैं बोल रही हूँ, आपकी रेडियो दोस्त कविता अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास। बहुत पुरानी बात है, एक वृद्ध किसान अपने पोते के साथ खेतों में रहता था। उन खेत खलियानों के चारों ओर सुंदर पहाड़ियां थी और थोड़ी ही नीचे एक नदी बहती थी। वह किसान सुबह उठकर अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ भगवत गीता का पाठ किया करता, जो उसे कंठस्थ था, और साथ में काफी मंत्रों का उच्चारण किया करता था। किसान का पोता प्रतिदिन अपने दादाजी को सुनता और वही सब करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी भगवत गीता के श्लोक बोलने लगा, परंतु उसे कुछ समझ न आता, वह केवल उन सब को बोल लेता था। एक दिन उसने अपने भोले स्वभाव में अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं यह सब मंत्र तो आपको सुनकर बोल लेता हूँ, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर मेरा ऐसा करने का क्या लाभ है। दादाजी ने उस समय उसे एक टोकरी दी जिसमें से वो अंगीठी में कोयले डाल रहे थे। वह बोले, यह टोकरी लेकर जाओ और नीचे नदी से इसमें पानी भर लाओ। बच्चा गया और पानी ले आया, पर ये क्या, उसने देखा ऊपर आते आते सारा पानी टोकरी की दरारों में से रिस गया और टोकरी बिल्कुल खाली है। दादाजी ये देखकर हंसे और बोले, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, थोड़ा तेज चलना होगा। बच्चा फिर गया और इस बार तेजी से आया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। वह कहने लगा, टोकरी में पानी लाना संभव नहीं है, मैं बाल्टी में ले आता हूँ। तो किसान ने कहा, नहीं मुझे तो टोकरी में ही चाहिए, तुम कोशिश करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ तो शायद यह हो पाएगा। इस बार उसने स्पीड अपनी और बढ़ाई और हाफते हाफते पानी भरकर लाया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। उसने अपने दादाजी को विश्वास दिलाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप देखना इस बार मैं कितनी तेज गति से काम करूंगा, फिर भी पानी नहीं आएगा। वह यह कहकर नदी की तरफ दौड़ा और दादाजी को दिखाते हुए टोकरी को नदी में डुबोया और बाहर निकालकर पूरी तेजी से ऊपर आने लगा, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। अब दादाजी बोले, दादाजी मुस्कुराए और बोले, टोकरी की तरफ देखो। बच्चे ने जैसे ही टोकरी की तरफ देखा तो उसे टोकरी कुछ अलग दिखी। पहले वह कोयला रखने के कारण अंदर और बाहर से काली और गंदी हो गई थी, पर अब अंदर और बाहर से एकदम साफ और सुंदर लग रही थी। दादाजी ने समझाया, यही होता है भगवत गीता पढ़ने से या मंत्र उच्चारण करने से, भले ही हमें समझ न आए, पर वह हमें अंदर और बाहर से यानी हमारे तन और मन को एकदम साफ कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ये सफाई चल रही होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस कदर अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बिना एहसास के यह टोकरी एकदम साफ हो गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ना केवल नाम जप, ना केवल मंत्र उच्चारण, अपितु कोई भी काम अगर हम नित्य रूप से करें तो उसका गहरा प्रभाव हमारे तन मन और चित्त पर अवश्य पड़ता है। और ये नियम अच्छी और बुरी बातों दोनों के लिए समान है, क्योंकि हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सही गलत या अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। इसलिए यह निर्णय हमारा है कि हमें क्या सीखना है। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। मैं आपके लिए और इसी तरीके की कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: कर चले हम फिदा जानो तन।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हो, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हो, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz।

जानवर, कभी आपने सोचा है कि किरदार का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कपड़े बदलने से, आवाज भारी करने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से? नहीं, आज हम बात करेंगे विजय आनंद साहब की एक खूबसूरत फिल्म गाइड की और समझेंगे कि एक अभिनेता रोल नहीं निभाता, वो एक जीवन जीता है। जी, इस फिल्म में देवानंद साहब का किरदार शुरुआत में थोड़ा हल्का है, चुस्त, आत्मविश्वासी और थोड़ा सा चालाक भी है। वो दुनिया को संभालता हुआ लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसके भीतर की जमीन खिसकती चली जाती है। यहीं से असली अभिनय उसकी शुरुआत होती है। ध्यान से देखिए, पहले हिस्से में देव साहब की चाल थोड़ी तेज है, बात करने की गति तेज है, आंखों में छमक है और अंतिम हिस्से में चाल धीमी हो जाती है, शब्द कम हो जाते हैं, आंखें स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता है, ये एक भाव के साथ आता है। यही पहला सबक है। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे उतरता है। अगर आप एक ही दृश्य में पूरा परिवर्तन दिखा देंगे तो ये अभिनय लगेगा, जीवन नहीं। दूसरी बात, इस फिल्म का नायक परफेक्ट नहीं, वो गलती करता है, वो स्वार्थी है और वो महत्वाकांक्षी है, और यहीं पर अभिनय की परीक्षा होती है। जब आप किसी किरदार को गलत मान लेते हैं तो आप उसे निभाना नहीं, सही साबित करना शुरू कर देते हैं और यही अभिनय झूठा हो जाता है। गाइड हमें सिखाती है, किरदार को जज मत कीजिए, उसे समझिए, उसके भीतर का तर्क सोचिए। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से, जहां किरदार एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाता है। ऐसे दृश्य अक्सर ओवर एक्ट हो जाते हैं, एक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है क्योंकि अभिनेता गंभीर दिखना चाहता है, लेकिन यहां देव साहब गंभीर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, वो शांत हो जाते। और याद रखिए, शांति अभिनय का सबसे कठिन रूप है। जब आप स्थिर खड़े होते हैं तो कैमरा आपकी हर सोच पढ़ सकता है, इसलिए स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, वो भीतर से आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म का ग्राफ शुरुआत से अंत तक किरदार का भावात्मक तापमान बदलता रहता है। एक अभिनेता को पूरी कहानी का नक्शा दिमाग में रखना चाहिए, वरना हर दृश्य अलग अलग ऊर्जा में बिखर जाए। तो अब अभ्यास की बात की जाए, अभ्यास के लिए अपने किसी भी किरदार को लीजिए, उसकी शुरुआत लिखिए, उसका अंत लिखिए, फिर बीच के 5 पड़ाव तय कीजिए। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइड अंत में यह सवाल नहीं पूछती कि नायक संत था या धोखेबाज, वो पूछती है क्या मनुष्य बदल सकता है, और अभिनेता का असली सवाल यह है क्या वो हर किरदार के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अभिनय नकल नहीं, वो परिवर्तन है। इस फिल्म को सिर्फ क्लासिक कहकर मत छोड़ना, उसे देखना और जरूर देखना और बार बार

सब कुछ निकला। ललित की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को जानने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है। वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललित भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललित हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम रिचुअल्स प्रैक्टिसेस इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ललित के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा तो, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं मिला। वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन होती है।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तसव्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते

फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ऐ दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो,

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

झूठी है ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
2: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब केएल सहगल, मुकेश किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुई। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलकार मंजर आम पे आई।

के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में

1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलूकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत

1948 में फिल्म प्यार की जीत का ये गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए मौसिकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत

इस तरह मौसीकार नौशाद अली के साथ आपने सफर खूबसूरती से अंजाम दिया। ये सफर अमर कोहिनूर, गंगा जमुना, पालकी, आदमी और दिल दिया दर्द लिया से होता हुआ कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ गुजरता गया।

0: दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा,
1: जी
0: कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ कुछ नहीं। हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत जबरदस्त गायक।
1: जी
0: हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे। और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह, सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी,
1: जी
0: लेकिन रफी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूमकर, तो जब सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या
1: जी
0: ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी के सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
0: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें बोले, तो कहते नहीं यार वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे खामखा, तुम एक काम करो।
1: जी
0: जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर वह सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, तो इसमें कई बरस बीत गए। और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए। तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए।
1: जी
0: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे। तो एक दो मैंने बजाए लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज कि रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, आप कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने की सीधी सी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गाकर दे दूंगा।
1: जी
0: मैंने कहा चलो डन हो जाएगा, और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में। लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उधर कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने मैं गया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहां कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कुछ कौओं की आवाजें आ रही थी। तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया।
1: जी
0: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करवा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो जिसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो से लाओ। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे, साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
1: जी
0: तो उन्होंने

0: एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड इसको भी दिया और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो वही एक मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई, बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
0: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड के बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का, कि मन रे तू काहे न धीर धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहब ने लिखा था कि कोई न संग मरे, तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस खोलते हैं और वो सुकून आता है उनकी आवाज से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
2: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसनलाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक,

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तू न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने बलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे।

महफिल चाहे तंज मिजाह की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल,

31 जुलाई सन 1980 को फनी मौसीकी के अंबर से एक चमकता सितारा वक्त की गर्दिश में न जाने कहां खो गया, जिसे आज भी और साल साल तक परिस्तारों की निगाहें तलाशती।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी पर मबनी ये प्रोग्राम, प्रस्तुत करता रमेश मराठा।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान है दविंदर सिंह कुराली। विषय है रक्तदान महादान। सहयोग राहुल अलियान का। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भरत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं आपके लिए कार्यक्रम इनसे मिलिए का एक और एपिसोड। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा है। आप सबने पढ़ा होगा, रक्तदान महादान है। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। ये एक हिंदी वाक्यांश है जो रक्तदान के महत्व को दर्शाता है, ये बताते हुए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य है जो किसी के जीवन को बचा सकता है। रक्तदान किसी दुर्घटना, सर्जरी या बीमारी के कारण रक्त की कमी वाले व्यक्ति के जीवन को बचाने का एक शानदार तरीका है। अगर हम रक्तदान करते हैं तो उस रक्तदान से हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में जो आमंत्रित मेहमान है वो रक्तदान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार उन्होंने रक्तदान किया है। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रक्तदान असल में है क्या। आज स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान है देवेंद्र सिंह कुराली जी, आइए करते हैं उनका स्वागत, जानते हैं इस विषय में उनसे बहुत सारी जानकारी डिटेल में। देवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
1: धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत जी। मैं देवेंद्र सिंह कुराली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाड़े का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कुराली है, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाड़ा में, और मेरा गांव बहुत ही छोटा सा गांव है। और मेरे गांव में अक्सर मैंने देखा है पहले टाइम से लोग जागरूक भी नहीं थे, ना ही रक्तदान को लेकर जागरूक थे। तो फिर मैंने सोचा है कि रक्तदान के प्रति सबसे पहले तो अपने गली मोहल्ला पड़ोस घर से शुरुआत की मैंने रक्तदान के लिए।
0: देवेंद्र सिंह जी, आपने अपना परिचय हमारे श्रोताओं के लिए दिया जिससे वो आपको और अच्छे से जान सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। देवेंद्र जी आइए करते हैं शुरुआत आज की चर्चा की। शुरुआत यहीं से करें कि रक्तदान जरूरी क्यों है।
1: सबसे पहले तो सर रक्तदान जरूरी है, ऐसे है कि रक्तदान करने से 3 जिंदगियां बचती हैं
0: जी।
1: और रक्त ना तो कहीं किसी फैक्ट्री में बनता है
0: जी,
1: ना ही किसी कारखाने में बनता है
0: जी।
1: रक्तदान तो एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा होता है
0: जी।
1: जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे रक्तदान के लिए, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया
0: जी,
1: बंदा क्या करता है रक्तदान के लिए, अपने किसी यार दोस्त को, किसी रिश्तेदार को फोन करता है
0: जी।
1: ये तो है नहीं ये फैक्ट्री में गया वो और रक्तदान आ गया लेके, फैक्ट्री में तो बन नहीं रहा जी, ये तो सहयोग से ही पूरा होगा जी एक दूसरे की। ये है जी,
0: ऐसा हमने देखा है कि जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, इसके ग्रुप्स होते हैं, जैसे बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो जब आप रक्तदान करते हैं तो ये किस तरीके से किस व्यक्ति तक पहुंचता है, क्या ये निश्चित होता है, या आप रक्तदान करते हैं फिर जिसको जरूरत होगी उस तक पहुंचता है।
1: सर ऐसे होता है, ये जो ब्लड बैंक होते हैं
0: जी,
1: ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल ब्लड बैंक है, जैसे
0: जी
1: रक्तदान करके बंद चाहे हॉस्पिटल में आया है चाहे कोई ब्लड कैंप में आया है
0: जी,
1: तो उस ब्लड को अलग अलग कर लिया जाता है, जैसे बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, उसको अलग अलग डिब्बों में डाला जाता है
0: ठीक है।
1: फिर वहां पे देखते हैं कि पेशेंट कैसा है, उसको कौन सा ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए या ए नेगेटिव चाहिए, फिर उसको वही ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में करें चाहे आप एक शिविर में करें, क्या उसी समय इंस्टेंटली वो बीमार को दिया जाता है या उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है।
1: सर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको मशीन में जाके प्रोसेस किया जाता है, रनिंग में लाया जाता है उस ब्लड को
0: जी,
1: के ये ब्लड वाकई में उस पेशेंट के काबिल है या नहीं है
0: जी।
1: जैसे उसके पेशेंट की एज भी देखी जाती है
0: ठीक है,
1: कि इसकी एज क्या है, फिर उसको ब्लड बैंक वाले उसी हिसाब से उस पेशेंट को चढ़ाते हैं।
0: इस चर्चा से मुझे ये समझ आता है कि अगर इसी समय किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है तो वो रक्त उसको तब मिल पाएगा जब वो कुछ समय पहले किसी ने दान किया हो, तभी ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं, जो आप रक्त देते हैं उसको तैयार रखा जाता है, जब इंस्टेंटली किसी को जरूरत होती है रक्त की तो उसको वहां बैंक से वो रक्त दिया जाता है।
1: हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो ऐसे ही जाता है
0: जी।
1: पर सर जैसे इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट केस है
0: जी,
1: ए नेगेटिव ब्लड चाहिए जो बैंक में नहीं है, ऑन द स्पॉट वहां पे कोई जाएगा
0: जी,
1: ब्लड देके आएगा
0: जी,
1: फिर उसको ब्लड को सिर्फ 10-15 मिनट का है
0: जो प्रोसेस
1: है वो 10-15 मिनट का है
0: जी,
1: फिर उसको पेशेंट को चढ़ा देते हैं।
0: आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो ये कि जो रक्त है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, हम मनुष्य है और हम सब में रक्त होता है, और जब हम रक्त को डोनेट करते हैं या रक्त दान करते हैं तो ही ये किसी मनुष्य के काम आ सकता है। तो ये कितना जरूरी है कि हम सबको रक्तदान करना चाहिए।
1: सर रक्तदान तो ऐसे है जैसे परिवार है हमारा, सभी के परिवार हैं, सभी के पास लड़कियां हैं, जैसे कन्या दान जरूरी है ना, ऐसे ही रक्तदान जरूरी है। जिसने कन्या दान कर दिया उसने, जिसने अपनी बेटी दे दी ना
0: जी,
1: उसने सब कुछ दे दिया, उसको दहेज की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: ऐसे ही रक्तदान है जी।
0: जी
1: जिस युवा ने रक्तदान दे दिया उसने तो सब कुछ दे दिया जी। रक्त तो ये तो नहीं है कि रक्त कहीं पे बन रहा है या कहीं से आके लेके आया, ये तो जी एक दूसरे का सहयोग है जी रक्तदान में। तो
0: यानी समाज के लिए जो सबसे महादान कहा जाता है
1: कन्यादान को कहा जाता है,
0: कन्यादान को कहा जाता है, तो कन्यादान के बराबर ही
1: रक्तदान।
0: बहुत अच्छी बात बताई। मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है रक्तदान महादान। हम सबको प्रेरित होना चाहिए, हम सबको ये समझना चाहिए जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि रक्त फैक्ट्री में नहीं बनता, वो अगर हमारे में है तो यही रक्त प्रोसेस करके दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है, हम औरों की जान बचा सकते हैं। देवेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सच है कि शरीर खुद रक्त बना लेता है, और जब हम रक्त दान करते हैं क्या हमारे में कोई कमजोरी तो नहीं आती है?
1: सर देखो जैसे रक्तदान किया है हमने, रक्तदान करने के बाद 24 घंटे में शरीर रक्त की कमी को पूरा कर लेता है। सरसा जैसे हमने रक्तदान किया, रक्तदान करने के बाद हमें कुछ आधा घंटा या घंटा रेस्ट करनी पड़ती है
0: जी।
1: रेस्ट किए जैसे हमने फिर थोड़ा दूध ले लिया है
0: जी,
1: थोड़ा फ्रूट ले लिया
0: जी।
1: फ्रूट दूध लेने के बाद फिर प्रॉपर हमारा शरीर वैसे ही जैसे पहले था ऐसे ही हो जाता है जी।
0: यानी कि जो हमने रक्तदान किया है वो कितने समय के बाद पूरा हमारे शरीर में हो जाता है?
1: 24 घंटे के बाद
0: जी। हाँ जी, यानी कि रक्तदान करने से हमारे शरीर पर कोई असर
1: नहीं
0: होने वाला है।
1: हाँ जी,
0: पर ये कि जो हमने रक्तदान किया वो किसी की जिंदगी को
1: बचाता
0: है। बिल्कुल। आमतौर पर जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो एक व्यक्ति ब्लड बैंक की ओर दौड़ता है, पर ब्लड बैंक में जो रक्त होता है वो आता कहां से है, उसके स्रोत क्या है, वो कहां कहां से आ सकता है, कृपया इसके बारे में आप बताएं।
1: जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में जो रक्त आता है वो है तो जैसे ट्रस्ट है, एनजीओ है
0: जी,
1: गांव में भी है, शहर में भी है, वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं जी।
0: जी
1: और कुछ है, मैं भी हूं उनमें
0: जी।
1: हम जैसे इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत होती है
0: जी,
1: हम हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड बैंक जाते हैं, ब्लड डोनेट करके आ जाते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन होता है जी, मैरिज एनिवर्सरी होती है
0: जी,
1: उस पर भी ब्लड डोनेशन करते हैं जी। बहुत अच्छी शुरुआत है
0: जी,
1: बढ़िया शुरुआत है जी, करना चाहिए। वहां पे ब्लड फिर ये ब्लड बैंक वाले आते हैं जी ब्लड कैंपों में, फिर वहां पे ब्लड पूरा करते हैं।
0: यानी कि जो जानकार है वो ब्लड बैंक में जाके अपना रक्त दान करते हैं।
1: हाँ जी।
0: पर आम लोगों के लिए जैसे आपने श्योर की बात की, तो आम लोगों के लिए आप किसी खास दिन, कोई फेस्टिवल हो या किसी महान हमारे देश के व्यक्ति का दिन हो, उस दिन फिर हम रक्तदान के शिविर लगाते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो क्या इसीलिए लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? हम जो रक्तदान अलग अलग जगह पे लगाते हैं क्यों लगाते हैं?
1: सर जैसा है जैसे रक्तदान शिविर है, रक्तदान शिविर ऐसा होता है कि रक्तदान शिविर में आम नागरिक है जो वो भी जा सकता है जी।
0: जी।
1: किसी को नहीं पता कि ब्लड बैंक कहाँ पे है
0: जी।
1: जैसे गांव है जी, देहाती एरिया है, मालूम पता ही नहीं ब्लड बैंक कहाँ पे है। जैसे उसको पता लगता है ना कि यहाँ पे ब्लड कैंप लगा हुआ है कि मैं ब्लड डोनेट करके आता हूँ, फिर ऐसे लोगों में जागरूकता आएगी जी ब्लड डोनेट करने की, फिर आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा, ब्लड की कमी नहीं रहेगी जी।
0: जी।
1: हाँ जी।
0: पर एक व्यक्ति जिसने आज तक रक्तदान नहीं किया है, आप उन लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? मैं चाहूंगा जितने हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वो भी रक्तदान करें।
1: प्रेरित करने का यह सर, मैंने खुद 66 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है जी।
0: अच्छा।
1: मेरे डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त, इसी महीने में मेरा बर्थडे था जी।
0: जी जी।
1: और जब मैं 18 साल का हुआ था, मेरे पापा ने मुझे बोला कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। 18 साल का होता है, पापा बोलते हैं कि अब आपको ड्राइविंग करनी है तो लाइसेंस तो बनवाना पड़ेगा
0: जी।
1: तो फिर मेरे पापा ने बोला मुझे कि एक नई शुरुआत कर कुछ जिसे समाज जागरूक हो। तो जब मैं 18 साल 5 दिन का हुआ तो मैंने ब्लड डोनेट किया जी,
0: पहली बार
1: जी। और मैंने अब तक 66 बार ब्लड डोनेट कर दिया जी। युवाओं को यही मैसेज है, जैसे आपकी फैमिली बोलेगी कि भाई 18 साल के हो गए हो, अब आप अपना लाइसेंस बनवाओ, अपना वोट कार्ड बनवाओ, वोट भी डालनी है
0: जी।
1: तो फिर मेरा तो सभी को यही मैसेज है, यही संदेश है, और संदेश का मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सभी से
0: जी,
1: जब भी आप ये बनवाने जाओ तो ब्लड भी डोनेट करके आओ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक सोच जो बनती है हमारी जिंदगी में, और अगर वो युवा लेवल से बने तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। जैसे देवेंद्र सिंह जी ने अभी कहा कि इन्होंने अभी तक 66 बार रक्त दान किया है, तो जरूर इन्होंने कई सारे जाने बचाई होंगी, और शायद इनको भी नहीं पता होगा जो इन्होंने रक्त दान किया है वो किस किस व्यक्ति किस किस मनुष्य तक पहुंचा। चलिए देवेंद्र सिंह जी, हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं सब्जेक्ट को, अभी तो हमें और भी बातें करनी है, आपकी जिंदगी के बारे में भी हमने जानना है। आप केवल रक्तदान ही नहीं करते होंगे, कुछ और भी करते होंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या संगीत आपकी जिंदगी में कोई जगह रखता है?
1: हाँ जी सर, संगीत का ऐसा असर है जो आदमी है चाहे अपनी ना बात चार तरीके से रख सकता है
0: जी,
1: एक तो बोल के
0: जी,
1: एक लिख के
0: जी,
1: एक इशारे से
0: जी,
1: और चौथा है गा के। तो गाना तो
0: जरूरी है
1: जी,
0: जरूरी है। तो आप खाली सुनते हैं या कभी गुनगुनाते भी?
1: कभी गुनगुना भी लेते हैं जी।
0: चलिए,
1: तो मैं जवान हूँ जी,
0: जी जी
1: गुनगुना भी लेते हैं जी।
0: चलो अच्छी बात है, वैसे तो बहुत सारे वृद्ध भी हैं वो भी अच्छा गाते हैं, वो भी तो गाने का शौक है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो हमारे श्रोता इस समय कार्यक्रम को सुनते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो आप हमारी श्रोताओं के लिए थोड़ा सा गुनगुनाएं भी, और हम वो गीत आपको भी और हमारी अपनी श्रोताओं को भी सुनाएंगे।
1: सर मैं सबसे पहले तो अभी कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त थी
0: जी,
1: और मेरे जो देश के जवान है मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ जी। आज हम उन्हीं की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं
0: जी,
1: और रात को जागते हैं, दिन में बॉर्डर की सीमाओं पर तैनात हैं
0: जी।
1: मेरा तो गाना 15 अगस्त को उन्हीं के लिए है जी।
0: जी बताइए कौन सा?
1: वीर जवानों के लिए।
0: आप गुनगुनाइए और फिर हम आपको गाना सुनाते हैं।
1: ये देश है वीर जवानों का, अलबेलो का, मस्तानों का, इस देश का यार, इस देश का यार।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इनसे मिली का एक नया एपिसोड, और हमारे साथ आज आमंत्रित मेहमान स्टूडियो में है देवेंद्र सिंह कुराले जी। इनसे हमने रक्तदान के बारे में जाना और भी कुछ जानकारी इनसे हम लेते हैं। देवेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग डरते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी होगी या बार बार देना सही नहीं है, क्या कहना चाहिए?
1: सर, रक्तदान करने से कमजोरी तो नहीं होती जी, और रक्तदान हमें 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच में करना चाहिए
0: जी।
1: और रक्तदान करने से 3 जिंदगियां बचती है, मैंने पहले भी कहा है जी।
0: जी,
1: और ये तो है नहीं है जी कि रक्तदान कोई गलत चीज है जी। और रक्तदान तो बहुत अच्छी चीज है जी, देखे दोबारा सर्कुलेशन होता है शरीर में, नया रक्त बनता है तो बंदा एक्टिव रहता है जी, पूरा शरीर उसका पूरा एक्टिव चुस्त रहता है जी।
0: जी,
1: और कम से कम 50 किलोग्राम वजन होना चाहिए,
0: यानी कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए।
1: स्वस्थ होना चाहिए जी, बंदे को कोई बीमारी ना हो जी।
0: जी जी,
1: जैसे आजकल छोटी मोटी बीमारियां ही रही हैं जी, सभी को ही है, पर फिर भी ये भी नहीं है कि सभी को ही है, कुछ स्वस्थ भी है जी, युवा, ऐसी बात नहीं है जी।
0: नहीं, कोई खास व्यक्ति जो रक्तदान नहीं कर सकता है,
1: जैसे किसी को शुगर है जी, अब
0: जी,
1: पर बीपी जैसे जिसका ज्यादा है जी, वो भी नहीं रक्तदान कर सकता जी।
0: इसके साथ जुड़ा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं?
1: सर, महिलाएं क्या, मैं आपको बताऊं, आजकल की जो हमारी लड़कियां हैं ना, गर्ल्स हैं, वो बहुत एक्टिव हैं जी।
0: जी,
1: जैसे हम शिविर लगाते हैं जी,
0: जी,
1: उसमें मैं देखता हूँ लड़कियां, युवा लड़कियां और महिलाएं रक्तदान करती हैं जी।
0: जी,
1: और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का जमाना है जी।
0: जी,
1: सोशल मीडिया पर लड़कियां देख रही हैं जी रक्तदान करने क्या क्या फायदे हैं जी। और मेरा तो लड़कियों को भी और महिलाओं को भी यही संदेश है जी, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए जी।
0: जी,
1: तभी महिलाएं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं जी,
0: जी,
1: वो रक्तदान नहीं कर सकती जी।
0: जी,
1: हाँ जी, क्योंकि वो पहले ही मान ले बच्चा है, उसको दूध पिला रही है जी।
0: जी,
1: इसके लिए मेरे तो युवा लड़कियां हैं जो स्टडी कर रही, लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं, कॉलेजों में ब्लड कैंप लगते हैं जी, अब वहां पे उनको शुरुआत करनी चाहिए रक्त की
0: जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और खास करके ऐसा माना जाता है कि जो युवा है वो हमारे देश की नींव होते हैं, अगर वो वयस्क होने के बाद रक्तदान करना शुरू करें, चाहे वो युवा है चाहे वो युवती है, तो उससे हमारा समाज जो है वो सेफ भी रहेगा, और रक्त देने की जो आदत है, जो एक परंपरा है उनके जीवन में, वो बन जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा अनुभव है आपको, कोई भावुक पल है जहां आपने रक्तदान किया और उससे किसी की जान बच गई?
1: सर, एक बार मैं, मेरे को फोन आया किसी अनजान नंबर से, जैसे अब सोशल मीडिया है मेरा देवेंद्र सिंह कुराली के नाम से पेज है
0: जी,
1: उस पे मैं जैसे डालता रहते हैं, सभी डालते हैं सोशल मीडिया पे अपने अच्छे अच्छे काम
0: जी,
1: मैं भी डालता हूँ अपने ब्लड डोनेशन के काम
0: जी,
1: कि मैंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है। तो मुझे फोन आया अनजान नंबर से
0: जी,
1: मैंने फोन उठा लिया, कह रहे जी पीजीआई में हमें ब्लड की जरूरत है, हमारी बेटी है डिलीवरी केस है और उसको ब्लड की जरूरत है। मगर जी कोई बात नहीं, मैं पीजीआई चंडीगढ़ चला गया उसको ब्लड डोनेट करने
0: जी।
1: तो मैंने ब्लड डोनेट कर दिया जी, तो मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं थे। तो उसका मुझे फिर कम से कम 2 दिन बाद फोन आया
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला आप कहाँ से हो, मैंने बता दिया मैं यहाँ से हूँ
0: जी,
1: कह रहे हमें आपसे मिलना है जी,
0: जी।
1: मह क्यों मिलना है जी, कह रहे आपने ब्लड डोनेट किया है, हमारा ना लड़की हुई है। देखो जी, आजकल के मतलब सोचते हैं कि लड़का लड़की सब एक बराबर है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो मिठाई का डब्बा लेके मेरे घर पे आए, तो मेरे ना आंखों में आंसू आ गए जी वो देख के।
0: तो आपके लिए वो बहुत बहुत
1: है
0: जी जी,
1: वो हिमाचल कांगड़ा से थे जी।
0: जी, आपको लगा कि आपके रक्तदान से किसी को जीवन दान मिला?
1: हाँ जी
0: जी, ये बहुत जरूरी है और हमारे समाज के लिए भी ये बहुत जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की ओर से भी लोगों को आग्रह करते हैं कि वो रक्तदान के बारे में जानकारी हासिल करें और रक्तदान करें, क्या पता जिस समय हम रक्तदान कर रहे हैं हम उस समय स्वस्थ हैं और कुछ समय के बाद अगर हमें ही रक्त की जरूरत पड़ती है, जब किसी ने दान किया होगा तभी तो हमें मिल पाएगा, तो इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। देवेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आप रक्त दान करते हैं ये एक समाज सेवा है, तो आप समाज सेवा के साथ कैसे जुड़े, क्या इसके बगैर भी आप कुछ करते हैं समाज के लिए?
1: सर, समाज के लिए मेरा एक ट्रस्ट है
0: जी,
1: उसका नाम है श्री श्याम फाउंडेशन ट्रस्ट
0: जी,
1: श्याम सिंह मेरे दादाजी का नाम था।
0: ओके,
1: और आज के टाइम में अपने युवा भी देखे होंगे अपने बुजुर्गों को भूल गए हैं जी।
0: जी
1: बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत नहीं करते, तो मेरा तो युवाओं को भी यही संदेश है अपने बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत करें
0: जी।
1: और मैंने तो ट्रस्ट है मेरी श्री श्याम फाउंडेशन ट्रस्ट है
0: जी।
1: उसमें मैं पुरानी किताबें इकट्ठी करके एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। हाँ जी हाँ जी, जैसे जरूरतमंद बच्चे हैं, मैं तो खुद एक देहाती एरिया से हूँ जी, मैंने तो गरीबी देखी है नहीं बहुत
0: जी,
1: क्या है जरूरतमंद कैसे है क्या है सब मुझे पता है जी।
0: जी
1: तो जैसे आज के टाइम में महंगे महंगे स्कूल हैं जी, स्टडी बड़ी महंगी है जी,
0: जी
1: तो बुक्स है बैग है हमारी एनजीओ प्रोवाइड कराती है जी, बुक्स बैग और फीस।
0: यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों का सहारा बनते हैं। और क्या आपने इस तरह की कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है?
1: सर एक मेरा गांव, मैंने आपको बताया मेरा गांव कुराली है जी, नारायणगढ़ के पास
0: जी,
1: मैंने कुराली गांव में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जी,
0: जी
1: जिसमें जरूरतमंद बच्चे आते हैं अपने स्टडी भी करते हैं वो और बुक्स भी लेके जाते हैं
0: जी,
1: और अगले साल वो जैसे पास होते हैं और मुझे मिठाई भी खिला के जाते हैं और बुक्स देके भी जाते हैं जी। मतलब ये है वो पुरानी किताबें सभी के घर में होती हैं जी, वो ना रद्दी के भाव ना बिके
0: जी,
1: वो किसी के काम आए
0: जी,
1: ये संदेश है जी मेरा तो।
0: अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप जिस स्टूडियो में इस समय बैठे हैं ये भी एक संस्था चलाती है जो एक थिएटर संस्था है, और जो आपकी संस्था है आप भी लोगों के लिए कार्य करती है, जैसे हम आपकी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो इसका आप मैनेज कैसे करते हैं, आप अपने समय को किस तरीके से लगाते हैं ताकि आप बच्चों के जिंदगी में शिक्षा का जो एक भाव है वो आप तैयार करते हैं?
1: सर ऐसा है तो सभी के पास 24 घंटे जी,
0: जी
1: वो 24 घंटे हमें अच्छे कार्य में ही लगाएं तो अच्छी बात है जी।
0: जी
1: और मैं तो भगवान से जुड़ा हुआ हूँ जी शुरू से
0: जी,
1: मैंने मतलब एक ऐसे रूहानियत का नाम लिया हुआ है जी, ऐसे परमात्मा का नाम लिया हुआ है जी, जो मतलब सभी को सिखाता है कि प्रेम से रहो प्यार से रहो और सेवा करो
0: जी,
1: वहाँ पे साफ सफाई सेवा सिखाई जाती है जी कैसे
0: जी,
1: करनी है
0: जी।
1: मैं तो वहां से इम्प्रेस हूँ बहुत।
0: मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि जो आध्यात्मिक समय है उसमें आज के दौर में जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, क्या उससे हमारे बच्चे इन चीजों से दूर हो रहे हैं?
1: आज का सर जो युवा है मैं भी देखता हूँ बाहर युवाओं को, वो आध्यात्मिक की तरफ बहुत कम है जी।
0: जी
1: मुझे लिखने का बहुत शौक है जी।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और आपके टीम में और कितने लोग हैं जो आपका सहयोग करें?
1: मेरी टीम में तो सर काफी लोग हैं, मेरे सर व्हाट्सएप ग्रुप है
0: जी,
1: अम्बाला चंडीगढ़ पंचकुला
0: जी,
1: जैसे इमरजेंसी में किसी को ब्लड की जरूरत होती है वहां से जानकारी मिलती है, फिर वो मैं चेक करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे कि ओ पॉजिटिव किसका है बी पॉजिटिव किसका है, फिर मैं उनको कॉल करता हूँ। कई बार ऐसा होता है मुझे कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती
0: जी,
1: हमारा डोनर चला जाता है वहाँ ब्लड डोनेट कर दे, और हमारी जो सेवा है वो बिल्कुल फ्री है जी।
0: जी
1: हाँ जी, उसका हम कोई चार्ज कोई पैसा कुछ नहीं लेते, हमारा तो फ्रेंड सर्कल है जी अच्छा, हम तो आपस में दोस्त इकट्ठे होते हैं जी और आपस में हमारा डोनेशन वाला काम चलता रहता है।
0: आपने फ्रेंड सर्कल की बात की, इससे मुझे ध्यान आ रहा है आप दोस्ती को कितना महत्व देते हैं, आपके लिए आपके दोस्त कितने महत्व है कितने महत्व रखते हैं, और आप दोस्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या आप किसी खास दोस्त को याद करना चाहेंगे और उनको कुछ कहना चाहेंगे?
1: सर दोस्त तो मेरे बहुत हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया दोस्त हैं जी,
0: जी।
1: पर दोस्त मतलब अगर मैं एक के बारे में कह दिया जी दूसरा नाराज हो जाएगा,
0: ठीक है
1: मेरे लिए कोई ये नहीं है कि वो अच्छा है वो अच्छा है, पर जैसे कोई दिक्कत आ जाती है जी,
0: जी
1: जैसे हम अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते
0: जी,
1: वो बात हम अपने दोस्त से शेयर कर लेते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है दोस्त से शेयर करके।
0: जी जी बहुत अच्छा है, और ये चर्चा जारी रहेगी और इसके बाद देवेंद्र जी से अनुरोध करेंगे आपको एक और गाना उनकी पसंद का हम सुनाना चाहेंगे, और उसके बाद अंतिम दौर में है इस कार्यक्रम में हम पहुंच जाएंगे। तो अब कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का?
1: सर मैं अभी पीछे से कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था जी,
0: जी
1: मेरी छोटी बहन है और उससे छोटा मेरा भाई है
0: जी,
1: मेरी छोटी बहन है उसका नाम है मीनू
0: जी,
1: वो है चंडीगढ़ के पास एक गांव है टोगा
0: जी,
1: जहाँ पे पीसीए स्टेडियम खुला है जी,
0: जी
1: उसके बिल्कुल नजदीक है
0: जी,
1: और मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता हूँ जी,
0: जी
1: और जब हम छोटे थे हम लड़ते भी बहुत थे जी, ऐसी बात नहीं पूरा लड़ाई झगड़ा हमारा होता था, पर अब जब दूर चली गई है तो अब मुझे उसकी बहुत याद आती है जी,
0: जी
1: तो मैं तो अब रक्षाबंधन पे गया उसके पास तो मुझे तो फिर गाना भी मेरे ये छोटी बहन को समर्पित है, यही गाना है जी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: मीनू जी, ये गाना देविंदर जी ने, आपके बड़े भाई ने आपको डेडिकेट किया है और हमें खुशी है कि एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज आप लोगों की जिंदगियों में एक हमसफर बनने की कोशिश करते हैं और ये गाना मीनू जी आपके लिए।

0: जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये गाना जो है ये आपको पसंद आया होगा। और आइए, हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में है और हम बात कर रहे हैं आज एक समाज सेवी देविंदर सिंह कुराली जी से। देविंदर सिंह जी, आपने अपनी संस्था के बारे में बताया, आप मुझे ये बताइए कि आपकी संस्था आगे क्या करने जा रही है, आपकी संस्था की आगे क्या सोच है, क्या रोड मैप है?
1: सर, हमारी संस्था का तो, श्री श्याम फाउंडेशन ट्रस्ट का तो ये रोड मैप है, जैसे तहसील है, नारायणगढ़ तहसील है हमारी जी, और फिर डिस्ट्रिक्ट का जिले हैं
0: जी,
1: तहसील में भी और जिले में भी जरूरतमंद बच्चे बहुत हैं जी
0: जी,
1: कोई भी बच्चा बिना स्टडी से वंचित ना रहे
0: जी,
1: ये है हमारी। और तहसील वाइज, जिला वाइज लाइब्रेरियां बने
0: जी,
1: उसमें फ्री में स्टडी होए
0: जी,
1: कोई ऐसे ना बोल दे कि मैं स्टडी के बिना मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, श्री श्याम फाउंडेशन उसको पूरा करे।
0: और अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं जानते हैं या आपसे काफी दूर है, जैसे आपने तहसील और जिले की बात की है, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे संपर्क कर सकते हैं?
1: संपर्क करने का सर ये है, हमारा है सोशल मीडिया
0: जी,
1: श्री श्याम फाउंडेशन ट्रस्ट का पेज भी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
0: जी,
1: और उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप उससे जुड़ के, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहाँ पे
0: जी,
1: कौन कौन सी क्लास की कौन कौन सी बुक है हमारे पास
0: जी। हाँ जी, तो वो बुक्स प्राइवेट स्कूल्स के लिए होती है या एनसीईआरटी की बुक्स, कौन सी बुक्स?
1: वो सर प्राइवेट भी है, एनसीईआरटी भी, दोनों है हमारे पास।
0: यानी कि जो जरूरतमंद बच्चा है उसको जो भी किताब चाहिए वो आपके पास उसको मिल सकती है, अगर नहीं मिल सकती तो क्या आप उसके लिए अरेंज भी करा सकते हैं?
1: उसके लिए सर हम अरेंज कराते हैं, जैसे हमारे पास भी कई बार वो बुक नहीं होती
0: जी,
1: जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है जी
0: जी,
1: तो हम वहाँ से उसको बुक सेलर से ले लेते हैं, फिर उसको प्रोवाइड करा देते हैं।
0: यानी कि मकसद ये है कि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे।
1: हाँ जी।
0: और वैसे भी आज का दौर ये है कि बिना पढ़ाई के हमारी जो गति है जिंदगी की वो नहीं हो सकती है। अगर हमारा देश का युवा पढ़ा लिखा है तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो देश के लिए और हमारे अंबाला के जो युवा है उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा?
1: सर, देश के लिए और अंबाला के युवाओं के लिए मेरा तो यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें
0: जी।
1: और जैसे अब युवा है, युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं जी
0: जी,
1: जमीन है, प्रॉपर्टी है और मकान है, वो सब बंटवारा हो जाता है भाइयों में
0: जी,
1: और जो स्टडी है वो बंटवारा नहीं हो सकता,
0: वो जिसने जितने किए वो उसी की है,
1: उसी की है
0: जी।
1: जैसे अच्छी स्टडी की है, अच्छा अफसर लग गया, अफसर से नीचे तो लगेगा नहीं, फिर तो ऊपर ही जाएगा जी
0: जी।
1: तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे तो युवाओं को यही है जी, नशे की तरफ ना जाएं, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी खराब ना करें। आपके पेरेंट्स के बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके ऊपर
0: जी,
1: के मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। मेरे तो लड़कियों के लिए भी संदेश है, कुछ लड़कियां और लड़के अच्छे स्टडी करके बहुत टॉप पे चले भी गए हैं, पर जो नहीं गए, मेरा तो उनके लिए संदेश है
0: जी,
1: कि आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करो, आप अपने सपने पूरे करो,
0: वो मेहनत करें और
1: मेहनत करें,
0: आगे बढ़े और उससे हमारा देश भी आगे बढ़े,
1: देश भी आगे बढ़े।
0: देविंदर सिंह जी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता परिवार आपको इन कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपको कोई ऐसी जानकारी समाज के लिए देनी होगी तो आप जरूर हमारे स्टूडियो आए और उस जानकारी को हमारे पास आप दें, ताकि हम इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्य के लिए जो आप करते हैं, आप बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें देते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आप रक्तदान करते हैं, आप समाज में बहुत सारी जाने हैं उनको आप बचाते हैं। और आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस स्टूडियो में आप आज पहली बार आए हैं, यहाँ आके आपको कैसा लगा?
1: सर, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ, सबसे पहले धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका, और फिर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: जैसे कोई बच्चा पहली बार USA चला जाता है ना जी, USA जाके उसको बहुत अच्छा लगता है जी, टॉप कंट्री, अच्छी कंट्री है जी।

0: मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं यूएसए आ गया हूँ जी। आपने बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है जी, बहुत बढ़िया लगा जी। और मैं तो मतलब यही कहूंगा युवाओं से भी, मेरा यही संदेश है कि आप सभी अच्छे काम करें, बढ़िया काम करें और फिर यहाँ इस स्टूडियो में आए। और फिर ये जो आप अच्छा काम करोगे इस स्टूडियो के जरिए, आप अपना अच्छा मैसेज देश में लोगों तक पहुंचाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देवेंद्र जी, और यही हमारा मकसद भी है और यही हमारा उद्देश्य भी है और यही हमारा लक्ष्य भी है। हम इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अंबाला की बात करते हैं, अंबाला के लोगों की बात करते हैं, और हम हमेशा अंबाला के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि अगर वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से लोगों को कोई अच्छी बात कह सके, मार्गदर्शन कर सके, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने समय निकाला, आप आए यहाँ पर कार्यक्रम में, आपने अपनी बात रखी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और मुझे भी श्रोताओं दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान थे दविंदर सिंह कुराली, विषय था रक्तदान महादान। कार्यक्रम में सहयोग दिया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz से रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के मारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात

0: बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जय श्रोताओ, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो

बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है, इसके बाद हर

0: की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की

0: जरूरी बचाव। नंबर एक, नसों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो विदस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हमसफर जिंदगी का।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पाउन पटाके सुन मेरे दिल 90.0

0: दाज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अब अलग एंड से हमारे प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। तेरे होंठों पे रात ये बहाना था गोरी तुझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हिंदुस्तान सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो हिंदुस्तान 90.0 FM पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हिंदुस्तान, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।

0: ये सिर्फ गानों का सिलसिला नहीं, आपकी यादों का कारवां है। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तो संगीत दिल की बात बयां कर देता है। दिलों के दरमियान कितनी भी दूरी क्यों ना हो, एक सुरीला नगमा उन फासलों को मिनटों में मिटा देता है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खूबसूरत श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा अपने शहर की धड़कन FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता पर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हम सफर आरजे किरणी, और मेरे साथ इस खास सफर को यादगार बनाने के लिए मौजूद है,
1: और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोरी। रेडियो विदस्ता के सभी प्यारे अजीज और दिल के करीब रहने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किरणी जी, आज हवाओं में एक अलग ही ताजगी है, एक अलग ही मिठास है, जानते हैं क्यों?
0: बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि आज घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है उस शो का, जिसका इंतजार हम दोनों को ही नहीं बल्कि हमारे श्रोताओं को पूरे हफ्ते रहता है। जी हाँ, वक्त हो गया है आपके अपने बेहद खास और पसंदीदा शो आपकी फरमाइश का।
1: क्या बात है, सच में कहने जी, पहले पूरे एक हफ्ते से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो संदेश आए हैं और जो फरमाइशों का सैलाब आया है, उसने हमारे दिल को छू लिया है। एक एक मैसेज पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ रहे बल्कि आप सबकी धड़कनों को सुन रहे हैं, और साथ ही हम आपकी भावनाओं को हम महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा भारत जी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आई आपकी फरमाइशें सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं है, वो तो आपकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे हैं। चाहे बचपन का वो जिगरी यार हो जिससे परसों से बात ना हुई हो, कोई दूर बैठा सच्चा दोस्त हो, या फिर वो पहला मासूम प्यार जिसकी याद आज भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान

0: अनकही आवाज को, आपकी उन भावनाओं को सीधे उन दिलों तक पहुंचाने का जरिया बनता है।
1: जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर कोई गाना प्ले बटन दबाकर नहीं बजाते, हम यहाँ गानों के तारों से दो दिलों को जोड़ते हैं, दूरियों को मिटाते हैं और आपकी यादों में संगीतमय रंग भरते हैं, क्योंकि आपकी फरमाइश सिर्फ एक शो नहीं, ये हम सबका एक दूसरे से जुड़ने का एक जज्बाती पुल है।
0: तो बस फिर देर किस बात की, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और तैयार हो जाइए इस संगीतमय सफर में बहने के लिए। आइए इस हफ्ते के फरमाइशों के इस पिटारे को खोलते हैं और लेते हैं आज की पहली फरमाइश, जो हमारे पास आई है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है सहदेव दामोदर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म सफर का गीत। गीत के बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने। सहदेव दामोदर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, शलोक और दीपाली। आइए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज, विकास पंजेटा। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत जो फिल्म चंद्रवल से है और गाने के बोल है जीजा तो काला मैं गोरी गनी। इस गीत को आवाज दी है दिलराज गौर और विजय मजुमदार ने। पेश है ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवा, मीनाक्षी पदोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सती सावित्री से गीत। गीत के बोल है तुम गगन के चंद्रमा हो। इस गीत को आवाज दी है लता जी और मना डे ने। प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

फरमाई जो हमारे पास आई है उस गीत के बोल है चांद को ढूंढे पागल सूरज, और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा, बलविंदर सिंह, कर्नल HS कौशल। नीचे पेश है इनका पसंदीदा गीत।

说到那苏特阿里法马伊庄阿里巴萨伊很多人对立瓦拉乌特拉坎斯没想到的说他是尼萨尔·桑曼尼ये सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से गीत गीत की बोल है एक प्यार का निगमा है इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं नौशाद सलमानी बेबी आलिया और अयान बाबू पेश है इन सभी का ये पसंद है

है। अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म यारा दिलदारा के गीत की, जिसके बोल है बिन तेरे सनम, और उस गाने को अपनी आवाज दी है उदित नारायण और कविता कृष्णा मूर्ति ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। भेजने वाले श्रोता है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शिंदे, प्रणय बसंती, प्रतिभा ताई गोंडाने। लीजिए पेश है इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

आपली फरमाइश हमारे पास आई है प्रिंट तेजा मोदी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसवीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म फकीरा से गीत। गीत के बोल है दिल में तुझे बिठाकर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और साथ में लिख रहे हैं कि प्रोग्राम पेश करने वाले साहिबान को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारी ओर से भी बहुत सारा

अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हीरा सहारनपुर से। भेजने वाली श्रोता है सैयद मसरूद, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, अदीब, आफिया और सदाम। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म शोला और शबनम का गीत, जिसके बोल हैं जीत ही लेगी बाजी हम तो, और इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। लीजिए पेश है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो व्यवस्था हम सफर जिंदगी का जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणी या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा अपना नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से दोस्त और रिश्तेदार इस गाने को सुनना चाहते हैं, और ये संदेश, ये मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी फरमाइश को कार्यक्रम में जोड़ देंगे। और ये कार्यक्रम आप हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले गुरुवार को दिन के 2 बजे होता है। तो भेजिए अपने मैसेजेस हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का गीत। गीत के बोल है ताकत वतन की हमसे है। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म चा चा चा के गाने की, जिसके बोल है एक चमेली के मंडवे तले इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है ललेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले है पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। साथी में मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहनकर। मुझे पेश है इन सभी का पसंद।

ने जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणवीर वांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और मनराज। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से गीत। गीत के बोल है बंद हो मुट्ठी तो लाख की। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और लता मंगेशकर जी ने। प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंद।

और इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से अनीता की तरफ से, जो ये गाना डेडिकेट करना चाहती है आशी को। नीचे पेश है ये डेडिकेटेड गाना।

सभी श्रोताओं को अब हम सुनाते हैं फिल्म वक्त से गीत। गीत के बोल है ऐ मेरी जोहरा जबी। इस गीत को आवाज दी है मन्ना आंटी ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है अंबाला कैंट से। भेजे वाले श्रोताएं मंगत राम, काका मिस्त्री और जगमाल सिंह।

0: फ्रेंड्स, ये था आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। अब आपसे हम चाहेंगे विदा।
1: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: और मुझे भी दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रस

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब

0: पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं?
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: dala झमेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखे, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाई भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगदीप सिंह। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आप जान ही गए होंगे कि कार्यक्रम में आज आमंत्रित मेहमान को हम आप सभी श्रोताओं से रूबरू कराएंगे। आज के मेहमान एक शिक्षा विद्वान के साथ साथ एक कॉलमनिस्ट है जो विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी एक राय रखते हैं, समाजसेवी हैं और सशक्त लेखक भी हैं, जिनकी 24 से ज्यादा पुस्तकें अलग अलग विषयों पर प्रकाशित हुई हैं, 100 से ज्यादा आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं और उच्चतम शिक्षा के रूप में ये PhD है पॉलिटिकल साइंस में। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान डॉक्टर जगदीप सिंह जी का। आपका रेडियो वितस्ता स्टूडियो FM 90.0 MHz में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: थैंक यू सर, आपने मुझे FM रेडियो में आमंत्रित किया उसके लिए आपका धन्यवाद, और साथ साथ अम्बाला के लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका दिया उसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी बात मेरे अम्बाला के लोगों तक पहुँचेगी और इसके माध्यम से हम एक समाज सेवा का कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है तो वो बात भी पूरे समाज के लोगों तक पहुँचेगी।
0: आप अम्बाला कैंट के पहले FM स्टेशन स्टूडियो में पहली बार आए हैं और पहली नजर में आपको कैसा अनुभव हो रहा है?
1: हाँ जी सर, मेरा ये प्रथम अनुभव है अम्बाला के प्रथम रेडियो स्टेशन में। ये एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ उठाकर हम अम्बाला के लोगों को जागृत भी करते हैं और ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम पूरे अम्बाला की बात को एक प्रसारित करते हैं और एक ऐसा मंच है जितने भी बुद्धिजीवी लोग अम्बाला में हैं, जितने विद्वान लोग अम्बाला में हैं, ताकि अपनी बात समय समय पर यहाँ रखें और समाज में एक चेतना बढ़ाने का प्रयास करें।
0: यही डॉक्टर साहब हमारी भी कोशिश है और जो ये FM स्टेशन है ये पूरे अम्बाला के लोगों के लिए ही है। हम अपने प्रसारण में भी कहते हैं कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की आवाज या उनकी बात सुनना चाहते हैं आप हमें जरूर बताएं तो उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करके उनकी बात रिकॉर्ड करके आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में जानकारी दें, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई, ताकि चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे श्रोताओं से परिचित हों।
1: हाँ जी, मैं अम्बाला के नियर गांव लंढा जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ही है वहाँ पे जन्म हुआ और मेरी स्कूलिंग मेरे गांव में ही 10th का स्कूल है वहाँ से हुई है। उसके बाद मेरी प्लस टू शाहबाद DAV स्कूल से हुई है, BA मैंने SD कॉलेज, MA GMN कॉलेज और PhD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है और लगभग मुझे टीचिंग करते हुए 2005 में मैं टीचिंग में आया और डॉक्टर VK मल्होत्रा जो मेरे टीचर रहे हैं उन्होंने मुझे 2005 में मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और 2005 से लेकर लगातार 17 वर्ष मुझे हो चुके हैं, मैं विभिन्न कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और मुझे एक अच्छा महसूस होता है कि एक टीचिंग एक ऐसा मंच है जो हजारों लाखों बच्चों से और लोगों से रूबरू होता है और एक मार्गदर्शक के रूप में मैं बच्चों के सामने हूँ।
0: आपकी बात को याद करते हुए मैं अपने टीचर्स को भी याद करता हूं और मैं मानता हूं कि जो टीचर है वो देश का निर्माण करता है, क्योंकि जैसे हमारे देश के बच्चे होंगे वैसा ही हमारा देश आगे की ओर चलता है। और साथ में इसके साथ जुड़ता हुआ एक प्रश्न और करूंगा, हमारे आपने डॉक्टर VK मल्होत्रा जी का नाम लिया, वो भी PhD है पॉलिटिकल साइंस में और आप भी PhD है पॉलिटिकल साइंस में, तो जब आप दोनों उस लेवल तक पहुंच गए तो मिलना जुलना है वो कैसा रहता है?
1: हाँ जी, मैं अपने एक मार्गदर्शक के रूप में सर को याद रखूंगा, मेरे टीचर तो रहे हैं, मैं उनकी छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं उनका स्टूडेंट था MA में तो मैं एक खिड़की की तरफ बैठता था और सर मुझे पढ़ाते थे और खिड़की थोड़ी सी खुलती थी और मैं खिड़की से नीचे देखता रहता था और सर मुझे पढ़ाते थे और मुझे सर बीच बीच में पूछ लेते थे, जगदीप मुझे ये बताइए कि कॉलेज की सारी लड़कियां आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। तो मुझे सर की घटना हमेशा याद रहती है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सर की जो लेक्चर दिया है उसकी तरफ होता था, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ वो एक सर का आशीर्वाद ही है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, आज मेरी 24 किताबें हैं मार्केट में, जब भी मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, मुझे न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, मैं सर से पहले डिस्कस करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद ही हम डिस्कस करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम गुरुजन का नाम पहले लेते हैं और गुरुजन के आशीर्वाद से हम आगे चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप यहाँ तक आए हैं तो आपकी जिंदगी आगे भी ऐसी ही सक्सेसफुल रहेगी। आपकी कई विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, एकेडमिक बुक्स, सोशल कॉज के लिए जो बुक्स आपने लिखी हैं, कृपया आप बताएं किन किन विषय पे आपने काम किया है, और जैसे आपने कहा 24 पुस्तकें आपकी अभी तक प्रकाशित हुई हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा विवरण हमें दें, ताकि उसके बाद हम फिर उन पर बात करें।
1: हाँ जी, मैं अपनी बुक्स को एक्सप्लेन करने से पहले दो लाइनें और आपसे कहना चाहूँगा। मैंने जितना भी काम किया है वो काम मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मेरी वाइफ पूजा और बेटा है अरविंद, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, और उनके सहयोग से ही मैं ये काम कर पाता हूँ। जब भी मैं कोई रिसर्च के लिए कहीं हिमाचल में, कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं साउथ में या किसी भी स्टेट में जाता हूँ, तो उनका मुझे पूरा सपोर्ट रहता है, तो उन्होंने मुझे हर काम के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। तो अब आपने मेरे से बात की है कि हमारा जो काम रहा है, मैंने 2010 में पहली पुस्तक मिथ एंड ह्यूमन राइट्स स्टार्ट की थी, और उसको मैंने लिखा, और वहाँ से मैंने लिखने का सफ़र शुरू किया था। आज मुझे 13 साल हो चुके हैं, इन 13 साल में 24 पुस्तकें जो आई हैं, उनमें सबसे पहले थी मिथ एंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस करता हूँ कि मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सबके सामने ला सकूँ, और मैंने वो ऐसे ऐसे विषय लिए हैं जिसके माध्यम से जो समाज की वाकई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को समाज या सरकार के सामने भी हमने लाने का प्रयास किया। जितनी भी हमने किताबें लिखी हैं उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को, विभिन्न मंत्रालयों को, सेमिनार्स के माध्यम से और विभिन्न मेल्स के माध्यम से हम लगातार उनको भेजते रहते हैं, और उनसे इस बात में अपील भी करते हैं कि आप इस विषय के लिए कुछ कार्य करें। सरकारें भी कार्य करती हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको सरकारें बहुत कम टच करती हैं,
0: उनका ध्यान उस तरफ नहीं होता है, तो आप
1: उसके माध्यम से हम सरकार का ध्यान उसकी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जैसे सोशल इशू के साथ साथ हम एकेडमिक रूप से भी हम जो काम करते हैं, आज लगभग हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में मेरे द्वारा जो सिलेबस की किताबें लिखी गई हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट हमारी एक बुक आई है जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी भारत में लागू हुई है, हरियाणा ने भी उसको लागू किया है, उसके अकॉर्डिंग एक हमारी फर्स्ट बुक आई है जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, आज हरियाणा के सभी कॉलेजों में पढ़ी जा रही है, और मुझे खुशी है मेरी पहली बुक थी ये इस NEP के अकॉर्डिंग जो हरियाणा के सभी कॉलेजों में पढ़ी जा रही है। और वो बच्चे जो हमारी बुक पढ़ रहे हैं, मुझे सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि मेरी बुक बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: उसके बाद और जैसे आपने भी मानव अधिकार की बात की, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको मानव अधिकार की तरफ ले गई और आपने उस पर लिखना शुरू कर दिया?
1: जैसे मैं स्टार्टिंग में जो मैंने राइट्स को स्टार्ट किया, मैं ब्लाइंड हॉस्टल है अम्बाला कैंट में और ब्लाइंड कॉलेज भी है यहाँ पे, कई बार ये लोग मेरे पास आते थे जब मैं GMN कॉलेज में पढ़ाता था, ये राइटर्स चाहिए होते हैं इनको, तो मैं राइटर्स प्रोवाइड कराता था इनको कि ये ताकि अपना एग्जाम दे पाएं। उसके बाद जब इनके पास गया, मैंने इनकी समस्याएं जानी, तो समस्याएं जानने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है जो सरकार तक जो बात पहुंचानी चाहिए। मैं वहां गया, मैंने उनको विस्तृत रूप से जाना, फिर मैंने सबसे पहले ब्लाइंड पे एक बुक लिखी थी, ह्यूमन राइट्स एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स, और मैंने चंडीगढ़ के विजिट किया, दिल्ली मैंने विजिट किया, ब्लाइंड्स की क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने विस्तारपूर्वक जाना, और फिर मैंने उसको बुक में रूप में मैंने शामिल किया। और मैं मेरा उद्देश्य ये था कि समाज के सामने कि लोग जीवन कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से आगे आने के लिए कितना इनको मेहनत करना पड़ता है, जबकि भगवान ने हमें स्वस्थ बनाया है, सब कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ हमें किया है, लेकिन इनके साथ जो भगवान ने थोड़ी नाइंसाफी की है,
0: दृष्टि की
1: नाइंसाफी की है, उसके बाद भी इतना संघर्ष करते हैं और आज बड़े बड़े मंचों पर ये हैं, तो मुझे ये लगा कि ये बात समाज तक लेके आनी चाहिए। तो पहले मैंने वो बुक लिखी थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं लगातार ह्यूमन राइट्स के जितने भी विषय मुझे लगे कि इन पे काम किया जाना चाहिए, मैंने उन सभी विषयों पर काम करना आरंभ किया।
0: आपने जो पहली किताब की आपने बात की, मिथ एंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो आपने इसका नामकरण किया मिथ एंड रियलिटी, क्या आपने पाया कि मिथ अलग है और रियलिटी, इन दोनों में कुछ अंतर है?
1: यस, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं
0: जी,
1: पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, हम थ्योरी पढ़ाते हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल राजनीति की अलग है। ऐसे ही जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में बिल्कुल अंतर है। हम समाज में जो देखते हैं, जब हम उसकी तह तक, हकीकत तक जाते हैं, उसकी रियलिटी कुछ और ही होती है। बहुत डिफरेंस है दोनों में।
0: यही आपने उस किताब में, जहां तक मेरा ख्याल है, आपने विवरण दिया है कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना है तो हमें उसके बेस तक जाना जरूरी है। जरूरी नहीं है जो हमें दिखता है वो ही सही हो।
1: जी,
0: इस विषय में भी हम और बात करेंगे। आपने एक पुस्तक लिखी है भारतीय संविधान, थोड़े से शब्दों में बताएं कि इसका जो सब्जेक्ट आपने लिया तो क्या सोच के लिया?
1: देखिए, भारतीय संविधान एक एकेडमिक पुस्तक है और विद्यार्थियों के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है
0: जी।
1: और हम सबको, हम सब भारतीयों को उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय राजनेताओं को भी संविधान का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जिस पवित्र संविधान को हमारी संविधान सभा ने बनाया था और जो आज लगभग इतने वर्ष हो चुके हैं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत है
0: जी।
1: और इतने अधिक वर्षों से हमारा संविधान केवल एक ऐसा संविधान है जो आज टिका हुआ है, नहीं तो अधिकतर देशों ने जो 1947 के बाद आजाद हुए हैं उनके संविधान नहीं रहे, वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हुई और वहां पे तानाशाही सरकारें आई। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने संविधान को कायम रखा हुआ है, लेकिन हमें और अधिक अभी इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है और समय अनुसार इसमें परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, ताकि जो आज हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जैसे कोई कोरोना की समस्या आ जाती है या दूसरी कोई और समाज को बदलने की समस्या आ जाती है, समाज की सोच को बदलने की समस्या आ जाती है, तो हमें इस प्रकार के अमेंडमेंट करने चाहिए संविधान में, ताकि हम अपने राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले आए और सभी, यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम 2047 तक भारत को संविधान के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं।
0: एक सरल सा प्रश्न करना चाहूंगा मैं, एक आम जन जैसे मैं हूं, मुझे संविधान के बारे में केवल उतना ही पता है जो मेरे राइट्स हैं। मेरी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में सही निर्णय कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये तो मेरे जीवन के साथ जुड़ा है। पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सरल तरीका है कि हमारे देश का हर कोई व्यक्ति संविधान को पढ़ पाए या उसको जान पाए?
1: हाँ जी, भारतीय जो संस्कृति है वो इतनी महान है, संविधान के समान ही हमारे पास इतने सारे ग्रंथ थे, संविधान के समान ही हमारे पास इतनी धार्मिक पुस्तकें हैं। देखिए, हम जब संविधान को पढ़ते हैं, जब एक साधारण व्यक्ति की नजर से हम उसको देखते हैं, तो हम सबको ये मानना चाहिए कि हम संविधान में अपनी जो ड्यूटी है उसको वास्तविक रूप से निभाएं। यदि हम अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तो हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं। संविधान एक ऐसा माध्यम है जो इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्रों को एक सूत्र में परो देता है, एकता कायम करता है। अखंडता और एकता आज संविधान की वजह से है। आज इतने अधिक धर्म, भाषाएं, विभिन्नताओं का देश भारत जो है, यदि हम एकजुट हैं तो उसका श्रेय पूरा संविधान को जाता है। यदि संविधान जैसी हमारे दस्तावेज ना हो तो आज कंट्री को एकता और अखंडता के रूप में पिरोया नहीं जा सकता।
0: भारतीय संविधान इस समय बच्चे कॉलेज और उनमें पढ़ते हैं, जो आपकी लिखी किताब है, तो आने वाले दिनों में क्या वो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या उनका दृष्टिकोण हमारे संविधान के प्रति पूरा हो पाएगा जो ये पढ़ाई करते हैं?
1: जब तक हम 2047 में, अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि पहुंचेंगे, भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा होगा या हो चुका होगा, और हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन का विश्वास बढ़ेगा, आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लोग उन पर विश्वास अधिक करेंगे, और अधिक विश्वास करने का मतलब ये कि उनके बारे में जैसे ज़्यादा वोट के लिए लोग जाएंगे। आज जो इंडिया में वोट परसेंटेज है 65 आसपास ओवरऑल परसेंटेज आता है, तो वोट परसेंटेज हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया संविधान के सामने कोई समस्याएं होंगी, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, आज जो उसका एजुकेशन सिस्टम है, जब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें हमारी सरकारों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे बच्चे जॉब ओरिएंटेड भी होंगे, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी उनका रुझान बढ़ेगा, और वोट देने के लिए भी जाएंगे और अपने राष्ट्र की जिम्मेवारियों को भी समझेंगे और उनका स्किल भी डेवलप होगा। तो इस प्रकार से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये सरकार का उद्देश्य है कि संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति बच्चों का और नागरिकों का एक रुझान पैदा किया जाए।
0: आपने इस विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है ताकि जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा देश आगे तरक्की पर चलता रहे तो हमें अपने भारतीय संविधान को समझना होगा, और जिसमें हमारे हक यानी जो हमारी राइट्स है वो भी चलें, और साथ में हम अपनी ड्यूटी जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है वो भी हम साथ साथ निभाएं। इंग्लिश में कहते हैं कि द ड्यूटीज एंड राइट्स शुड गो टुगेदर। तो इसकी बात आपने डिटेल में की। आपने एक पुस्तक लिखी है न्यू होराइजंस इन बिजनेस वर्ल्ड, जो इन दोनों विषयों से अलग है। आपने संविधान की बात की, आपने मानव अधिकार की बात की, और इस पुस्तक के बारे में आप कृपया बताएं।
1: देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए राजनीति और व्यापार दोनों जरूरी है। यदि हम मॉडर्न तरीके नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने राष्ट्र को विकसित नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारी हरियाणा सरकारों के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड को ट्रेड फ्री किया जा रहा है जी। अभी G20 समिट हुई है, इंडिया ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया है। हम यूरोप और दूसरे कंट्रियों के साथ एक ऐसा मंच, आर्थिक मंच बनाना चाहते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चों का आज पलायन हो रहा है, अधिकतर बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, ताकि वो पलायन हमारा रुके और हमारे बच्चे इंडिया में रहें, अपने स्किल को इंडिया के लिए यूज़ करें। आप अपने स्किल को फॉरेन के लिए यूज़ ना करें, हमारा स्किल हमारे राष्ट्र के लिए, हम उसके लिए यूज़ करें, अपने राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र ने हमें पैदा किया, जिस राष्ट्र ने हमें इतनी आर्थिक, हमें आज तक की ज़रूरतें पूरी की हैं, तो हमारा भी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। तो अपनी बुक्स के माध्यम से हमने इस प्रकार की चीज़ें समाज को बताने का प्रयत्न किया।
0: तो आप देखते हैं कि आने वाला समय ऐसा है कि जब हमारे युवा अपने ही देश में काम करेंगे, उनको वो सुविधाएं मिल जाएंगी जो शायद जिसके लिए वो दूसरे देशों में जाते हैं।
1: जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो वो पूरी होती है। हमारी सरकार ने सोचा है, हमने सोचा है, और मेरे कारण, मेरी बात सुनकर हमारा समाज भी सोचेगा, तो ये अवश्य ही पूरा होगा कि हमारे बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, विदेशों के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आप विदेश ना जाएं। मेरे कहने का उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र को सर्वोच्च माने, बाकी उसके बाद प्रयास करें आप।
0: हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर जगदीप सिंह जी हमारे पास इस कार्यक्रम में हैं, और बहुत सी सार्थक बातें हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो समाज है वो इन की बातों से जागरूक होगा। और आगे हम बढ़ते हैं, आपने एक किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड विडोज, तो ये ख्याल कैसे आया और इसका जो बेस है वो कहाँ से बन पाया?
1: हाँ जी, जैसे सभी लोग जाते हैं श्री कृष्ण नगरी, वृंदावन और मथुरा जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसे ही जब मैं वहाँ गया एक बार, तो उनसे मालूम हुआ मुझे कि यहाँ पे विडोज बड़ी संख्या में हैं। अच्छा। तो मैंने ये जानना चाहा कि यहाँ पे इतनी संख्या में विडो क्यों हैं। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तो जब मैं वापिस आया मैंने उसको नेट पर सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है। तो जब मैंने नेट से काफी सारा सर्च किया,
0: और यहाँ मैं आपको रोकता हूँ, जो वहां पर ज्यादा विडोज आप कह रहे हैं, क्या वो वहीं के हैं या बाकी देश के हिस्सों से वहां आते हैं?
1: यस, जब मैंने नेट पे सर्च किया, नेट पे सर्च करने के बाद मैं दोबारा वहां पे विजिट करने के लिए गया। मैं लगभग 3 से 4 बार वहां गया और मैं 2 महीने तक लगभग वृंदावन में रहा। और अधिकतर लोग जाते हैं, वो मॉडर्न जो न्यू वृंदावन है उसको देख कर आते हैं, जो ओल्ड वृंदावन है उस पर बहुत लोग नहीं जाते। जब मैंने नेट से सर्च किया, मैं आपको बताऊं, मुझे ये मालूम हुआ कि वृंदावन में 20,000 विडोज हैं। अच्छा। 20,000। और जब मैं वहाँ पे म्यूनिसिपलिटी में गया, मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया और गया, तो मुझे 3200 विडोज का रिकॉर्ड मिला, बाकी विडोज का रिकॉर्ड ही नहीं है। 20,000 विडो वहाँ पे रहती हैं। जब मैं ओल्ड वृंदावन गया, मैंने स्टडी किया, मैंने जाकर देखा कि एक एक रूम में, हॉल टाइप रूम में 80-80 विडोज रहती हैं और उनके लिए सिर्फ एक टॉयलेट। और मैंने जब अपनी स्टडी आगे बढ़ाई तो मैंने देखा कि साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े उनको मिलते हैं और 1 बिस्तर मिलता है साल में सिर्फ, उस पे वो गुजारा करती हैं। 80s लेडीज के लिए एक टॉयलेट और बेसिक फैसिलिटी तो है ही नहीं, रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके लिए। हर प्रकार से उसको विस्तार पूर्वक स्टडी किया और ये बात मैंने भारत सरकार विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस में उनके सेक्रेटरी साहब उन तक भी मैं लेकर गया। तो जो वास्तविकता है, जो हम बात करते हैं मानवाधिकार, हकीकत और जो मिथ है वो क्या है, हकीकत कुछ और है, मिथ कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। जब हम मौके पर जाकर स्टडी करते हैं, हम देखते हैं, तो जो समस्याएं थी मैंने अपनी किताब के माध्यम से वो समाज को या सरकारों को बताने का प्रयत्न किया है।
0: यानी कि आपने उस समस्या को देखा, उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद आपने उसका समाधान देने की कोशिश की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने, जिसके ऊपर आपने लिखा, फिर आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, आप खुद गए वहां पर, खुद आपने देखा। क्योंकि जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं तो देन उसके बाद अगर हम सही सोच रखते हैं तो उसके बारे में हम बात जरूर करते हैं, जो आपने किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से किया और सरकार तक भी बात पहुंचाई, वही प्रयत्न हम भी करते हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक अगर ये बात पहुंचती है तो कम से कम उन माताओं के लिए अब वो कुछ अवश्य जरूर अच्छा करें ताकि उनके जो दिन है वो अच्छे से गुजरें।
1: इसमें एक और बात आपको कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आपने मुझे पूछा था कि कहां से हैं वहां पे इतने सारे वीडियोस, वो हमारा थोड़ा रह गया था। जब मैंने स्टडी किया तो स्टडी में मैंने पाया 85% वीडियोस वेस्ट बंगाल से हैं, बाकी पूरे इंडिया से सिर्फ 15% वहां पे विडोज हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वेस्ट बंगाल में कई सारी जगह ऐसी हैं जिसमें आज भी विडोज को अभिशाप माना जाता है, जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, रीजन कुछ भी हो। अच्छा। प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो, बाकी हरियाणा पंजाब से दो चार ऐसा केसेस हैं, लेकिन ज्यादातर वेस्ट बंगाल से हैं, पूरे इंडिया से बस 15% के आसपास वहां पे लेडीज हैं।
0: मतलब सिर्फ जीवन अपना व्यापन करने के लिए फिर वो वृंदावन चली जाती हैं और वहां पर अपना रहन सहन करती हैं। आपने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि राजनीति ज्ञान में। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप राजनीति ज्ञान के माहिर हैं, आपने अपनी एक थीसिस करी होती है, तब जाके आप PhD हो जाते हैं, तो वास्तविक राजनीति और जो किताबों में राजनीति है, क्या उनमें कुछ, आप सरल शब्दों में कुछ अंतर बता सकते हैं?
1: हाँ जी, जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने एक बात डिस्कस की थी, मिथ एंड रियलिटी।
0: जी,
1: हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं और राजनीति थ्योरी से बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई समानता बिल्कुल नहीं है। जो हम पढ़ाते हैं, कई बार हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको राइट्स हैं, राइट टू वर्क है, राइट टू, आज सरकार ने राइट टू सोशल वर्क है, राइट टू लाइसेंस है, तो 7 दिन का टाइम आपको सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन जब आप 7 दिन के अंदर अंदर किसी चीज को लेने के लिए आप ऑफिस में जाते हो, बोल देते हैं छुट्टी में साहब कल आ जाना, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कई बार होता है, लेकिन फिर भी सरकारें इस पे लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन राजनीति विषय थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल से उसका कोई संबंध नहीं है बिल्कुल।
0: आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें।
1: इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आज वर्ल्ड में पीस है, शांति है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, लेकिन फिर भी 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक वर्ल्ड में पीस है। तो उसका उसके जिम्मेवार सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर यूएन, जिसने आज तक वर्ल्ड में शांति की स्थापना की हुई है। और दूसरी संस्थाएं हैं, G20 है, G77 है, हमारे आसपास एशिया के संगठन है, दक्सेस है, यूनेस्को एक एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, सारक है, और भी कई सारे संगठन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो आर्थिक सुविधाएं देता है। तो ये अगर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं तभी विश्व में शांति है और तभी विश्व में विकास है। यदि ये संस्थाएं नहीं होंगी तो विश्व में शांति भी शायद संभावित हो और विकास के रास्ते भी शायद नहीं मिल पाएंगे।
0: आपकी लेटेस्ट जो पुस्तक है वो है ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट्स, फिर हम मानव अधिकार पे आए। तो आप जो भी कोई विषय देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर रिसर्च करना चाहिए और इस पर लिखना चाहिए, तो आपके लिए जो ये सब्जेक्ट ट्रांसजेंडर्स एंड ह्यूमन राइट्स था, ये कितना आसान या मुश्किल था?
1: देखिए, विषय जब हम कोई भी चुनते हैं वो आसान नहीं होता
0: जी,
1: और जब हम उस पर काम करना आरंभ कर देते हैं तो विषय आसान होते चले जाते हैं
0: जी।
1: ट्रांसजेंडर को हम सब देखते हैं, हम भी अपने जीवन यापन के दौरान उनको लगातार देखते रहे हैं। तो मेरे मन में था, जैसा मैं हर उस टॉपिक को चूज करने की कोशिश करता हूँ जो समाज से अछूता है, तो मैंने ट्रांसजेंडर का टॉपिक लिया। और मैंने इसको इसलिए स्टडी किया कि एक ऐसा समाज जिसको हम अच्छा नहीं मानते, ताकि उस समाज की हकीकत भी सामने लाई जा सके, और वो समाज किस प्रकार से जीता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या सरकारें उनको उनके लिए करती हैं, समाज उनके प्रति क्या सोच रखता है। और इस उद्देश्य को लेकर मैंने ये टॉपिक लिया, और जब मैंने इस टॉपिक पर काम करना स्टार्ट किया तो ऐसे अनुभव मेरे सामने आए जो मैं आपके सामने जरूर बयान करूंगा। वैसे तो किताब में सारी डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा
0: जी।
1: जब हम चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में जाते हैं और या दिल्ली के हेडक्वार्टर में इनसे मिलने के लिए कहीं भी बना हुआ है वहाँ पे जाते हैं, तो हम कई चीज़ें बड़ी अजीब देखते हैं। मैंने देखा जब मैं गया चंडीगढ़ के इनके हेडक्वार्टर में, वहाँ पे छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने एक एक बच्चे को रूम दिया हुआ है और पूरी फैसिलिटीज़ और टॉयज़ वगैरह दिया हुआ है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप बच्चे ले आते हैं तो आप इनका अपने रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं इनका? तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई, वो कहते हैं कि जो बच्चे आपके हम ले आए, आपकी जिम्मेवारी थी स्कूल भेजने की, आप नहीं भेजते, हम इन सबको स्कूल भेजते हैं, जितने भी बच्चे वो लेके आते हैं उन सबको वो स्कूल भेजते हैं और उनकी स्टडी प्लस टू तक कंप्लीट कराते हैं, अगर आगे पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ़ने का मौका वो उसको देते हैं। मुझे ये देख कर बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे समाज किस प्रकार से इनको समझता है और ये कितना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और एक और अनुभव मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बातचीत में उनसे बात की, मैंने कहा कि आप आजकल जैसे ये भ्रम है, आप जाते हो बच्चे ले आते हो और ज़बरदस्ती छीन के बच्चे ले आते हो, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि क्या कोई किसी के बच्चे को ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं ले जा सकता। जिसके घर में ट्रांसजेंडर पैदा होता है वो हमें शाम को फ़ोन करता है कि हमारे घर में ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, आप आएं और उसको ले जाएं। वो हमें फ़ोन करते हैं, हम किसी के बच्चे को लेने नहीं जाते, इसलिए उनके बारे में जो भ्रम है वो नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: और एक और बात जो हम अपने रिसर्च के हमें सामने आई कि हम सब क्या करते हैं, अपने घर में कोई अनुष्ठान किया, अपने बच्चों के ऊपर से कुछ भी वार कर हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाइए ट्रांसजेंडर के घर दे आइए, हम क्या करते हैं अपनी सारी बददुआएं उनको देते हैं और सामान के बदले में वो हमें अपनी दुआएं देते हैं। एक इंसान जो हमें दुआएं दे रहा है वो समाज का एक उपेक्षित वर्ग कैसे हो सकता है? वो हमने उसको समाज से अलग किया, वो अलग नहीं हुए, हमने उनको अलग किया है। कई सारे मिथ हैं उनके बारे में कि जब उनके यहाँ डेथ हो जाती है कि वो अपनी डेड बॉडी को पीटते हुए ले जाते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब भ्रम है। जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज में संस्कार किया जाता है, इसी प्रकार से वैसे ही वो संस्कार करते हैं। जितने भी मिथ हमारे समाज में उनके बारे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी अनुचित कार्य को करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो तो हमारे समाज में भी हैं, उनके समाज में भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया है समाज के प्रति वो एक सकारात्मक रवैया है।
0: आपने बच्चों की बात करी, जो जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं, जिनको वो अपनी ओर से सुविधाएं देते हैं, क्या वो बच्चे ट्रांसजेंडर होते हैं या वो साधारण बच्चे होते हैं जो या तो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं?
1: नहीं, जो बच्चे उनके पास गए हैं वो ट्रांसजेंडर ही होते हैं। ट्रांसजेंडर मेल फीमेल हो सकता है, जो बच्चे वहाँ उनके पास जाते हैं वो सभी ट्रांसजेंडर होते हैं। और बारहवीं तक जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते कि ये बच्चे ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद बच्चे खुद समझते हैं कि वो क्या है, वो बिल्कुल भी उसके महसूस नहीं होने देते। ये मुझे बड़ी अच्छी बात उनकी लगी है जो हमारे बच्चों के प्रति वो ऐसा रवैया रखते हैं।
0: यानी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी सुनने वालों को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समाज हमारे आसपास है, कोई भी ग्रुप हमारे आसपास है, तो हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। केवल धारणाओं पर ही नहीं चलना चाहिए, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी जो बुक है ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट्स, अगर उसको पढ़ा जाए तो बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल मैं करना चाहूँगा। हमने अभी कुछ किताबों की, कुछ पुस्तकों की बात की, आप अपने लिए कब टाइम देते हैं? क्या आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ म्यूजिक या कुछ ऐसा सुनते हैं कि आप 24 घंटे लिखते ही रहते हैं?
1: नहीं सर, देखिए फैमिली को टाइम और अपने लिए टाइम बिल्कुल जरूर निकालते हैं, बल्कि फ्रेंड्स के लिए भी निकालता हूँ। मेरी एक हैबिट है, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं अधिकतर, और मैं समय समय पर फ़ोन करके जरूर याद करता हूँ। मुझे याद ना करें लेकिन मैं सबको याद करता हूँ। अपने समय लिखने के लिए भी निकालता हूँ और अपने फ्रेंड्स को याद करने के लिए भी निकालता हूँ, और परिवार के लिए भी शाम को जो समय मेरा होता है तो अपने परिवार के लिए भी जरूर निकालते हैं।
0: यानी आपने काम और परिवार और अपनी जिंदगी को अलग अलग समय दे रखा है जिससे आप आगे चलते हैं। तो संगीत सुनते हैं आप?
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको भी सुनाए और हम अपने श्रोताओं को भी सुना सकें।
1: हाँ जी, ये एक सॉन्ग है, देशभक्ति का है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

0: हमारी बात इस समय चल रही है डॉक्टर जगदीप सिंह जी के साथ। अगला विषय लेते हैं। सर, आपने मानव अधिकार के बारे में अभी बताया, सरल शब्दों में इसके मायने हम अपने श्रोताओं को कैसे समझा सकें, और क्या हमारे देश में सबको मानव अधिकार मिलता है?
1: देखिए सर, जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, हम प्राकृतिक अवस्था जब मनुष्य जंगलों में था, राज्य नहीं बना था, सरकारों का निर्माण नहीं हुआ था, हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं लॉक, जॉन लॉक, उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब भी उसको राइट थे, जीवन का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था
0: जी।
1: उस समय भी हमें अधिकार थे। जब हम आज एक मॉडर्न स्टेट में पहुंच चुके हैं, वहां से लेकर आज तक, तो जब हम मानव अधिकारों के विषय में जिक्र करते हैं, ठीक है, बहुत जगह एक्सप्लोइटेशन होता है, लेकिन जब हमारा समाज सभ्य होगा, हमारे समाज में जागृति आएगी, हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तो अधिकार लोगों को स्वयं प्राप्त होंगे। जैसे आप पश्चिमी राष्ट्रों को देखते हैं, हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अधिकार हैं, वो जिम्मेवार ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की थोड़ा दिक्कत है। जब तक हम पूरे समाज में एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, वास्तविक रूप से एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो ये मानव अधिकारों की जो मिथ की समस्या है, हमारे यहाँ से समाप्त होगी। क्योंकि आज बहुत सारी धारणाएँ हैं समाज में, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ तक आज इंटरनेट की पहुँच नहीं है, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं पहुँच पाता, सरकारें सड़कें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ हम जागृति नहीं ला पाते। जब भारत विकसित होगा, सभी सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेंगी, तो मानव अधिकार स्वयं प्राप्त होंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत जैसा जो राष्ट्र है, वो कल्पना की जा रही है कि भारत में विश्व गुरु भी हो सकता है। ऐसी कल्पना हमारे राजनेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और स्वामी विवेकानंद जी ने की है कि भारत एक विश्व गुरु होगा, युवा शक्ति एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे हम, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे वेद कितने महान हैं, तो ये पूरी दुनिया को मालूम होगा। आज आप देखते हो हमारी सरकारों ने हमारे वेदों में से योग जैसे कॉन्सेप्ट को लिया है, और योग का पूरी दुनिया आज उसका सम्मान करती है, उसको लोगों उस योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को एक अच्छा स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार अधिकार भी हमें जरूर एक दिन प्राप्त होंगे सबको।
0: यानी कि आपका कहना है कि अगर हमें अधिकार लेने हो तो हमें उसके बारे में शिक्षित होना पड़ेगा। जब हम सब लोग शिक्षित होंगे तो हम अधिकार भी प्राप्त कर पाएंगे।
1: जी, जो मानव अधिकार शब्द है वो पूरी मानवता के लिए है, किसी आतंकवादी के लिए, जो पीड़ित है उसके लिए ये मायने नहीं रखता। हम तो पूरी मानवता की बात करते हैं, जो हमारे संविधान ने राइट दिए हैं, जो हमारे प्रकृति ने हमें अधिकार दिए हैं, पूरी मानवता के लिए। जन्म से कोई भी व्यक्ति ना तो आतंकी है ना क्रिमिनल है, समाज ने जैसी शिक्षा उसको दी उसका व्यवहार उस प्रकार से हुआ
0: जी।
1: या हम और अपराधी तत्वों का जिक्र भी करते हैं, अगर वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो शायद उनमें भी सुधार हो सकता है, हम उसको मानव अधिकारों से या वंचित नहीं किया जा सकते। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, जनेवा जो कन्वेंशन थी
0: जी,
1: उसके अनुसार चाहे कोई प्रिजनर है, युद्धबंदी है या कोई भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल व्यक्ति है, हमें सबको मानव अधिकार राष्ट्र के माध्यम से, समाज के माध्यम से देने चाहिए। मैं लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा जिक्र करूंगा, और दो विषयों का मैं जिक्र करूंगा। जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, पूरा भारत बंद था, उस समय हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पलायन की
0: जी।
1: करोड़ों लोग हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और दूसरे स्टेट से पलायन करके अपने स्टेट्स में गए, और कई सारे लोग 1800-1800 किलोमीटर
0: पैदल चलकर
1: अपने घर तक गए। रास्ते में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। हमने पिक्चर्स भी देखी, कोई सूटकेस पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, बिना चप्पलों के वो लोग जा रहे हैं। देखिए, जब कई बार ऐसी भयानक स्थिति आ जाती है जो पीड़ित लोग हैं उनके राइट्स नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि अब मैं एक और जिक्र करूं, जैसे कश्मीरी पंडित हैं, इतने सालों से विस्थापित हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सभी लोग अपने घरों को जरूर पहुंचेंगे, और सरकार चाहे ठीक है कुछ राजनीतिक समस्याएं हैं लेकिन सरकारों का प्रयास है कि वो लोग अपने घर कभी ना कभी जाएंगे और ये सपना उन सबका जरूर पूरा होगा।
0: आपने कश्मीरी पंडित की बात की, 34 वर्षों से वो अपने ही देश में विस्थापित है। जो कश्मीरी पंडितों के पेरेंट्स है वो इसी सोच से, या तो हालातों के हिसाब से या इस सोच से वो इस दुनिया को छोड़ गए, ये सोचते हुए कि हम घर कब जाएंगे। अगर कोई चीज आज मिलने वाली है और वही 50 साल बाद मिले, तो क्या इन दोनों में आप कोई समानता देखते हैं?
1: देखिए, राष्ट्र की बात हम करते हैं और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसको इतनी आसानी से और कुछ साल में हल किया जा सके। इतना बड़ा मुद्दा है हमारे, आज राष्ट्रीय स्तर पर ये इशू है, हमारी सरकारें लगातार सोच रही हैं, सरकार ने कई बार प्रयास किया है, अलग से एक बिल्डिंग कॉलोनी भी बनाने का प्रयास किया है, अभी पीछे किया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार ने इसी प्रयास को लेकर 370 वहाँ से हटाई, 35A को ख़त्म किया, केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वहाँ बनाया। ठीक है, गमों को भुलाया नहीं जा सकता।
0: आपने एक पुस्तक लिखी है, ह्यूमन राइट्स एंड वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमन। आपने महिलाओं के लिए इतने सारे किताबें लिखी हैं और आपने रिसर्च भी किया है, तो ये इसका विषय क्या रहा है?
1: हाँ जी सर, ये हमारी पुस्तक की इंडिया में जो वर्किंग वीमेन है और जो नॉन वर्किंग वीमेन है, उनका किस प्रकार का दिनचर्या है, किस प्रकार का जीवन जीती हैं, किस प्रकार उनके सामने समस्याएं हैं, वो हमने सारा अपनी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। पहले मैं बात करूंगा वर्किंग वीमेन। हमने बहुत सारे वर्किंग वीमेन जो हाईएस्ट पोस्ट पर थी, चाहे आईएएस है या उसे आईपीएस है, सबके इंटरव्यू लिए और हमने इंटरव्यू के माध्यम से उनको शामिल किया। जो वर्किंग वीमेन हैं उनकी लाइफ लगभग स्टेबल है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजन ले सकती हैं। कुछ वीमेन हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, नहीं ले बाकी सभी ले सकते हैं अपने। लेकिन जब हमने नॉन वर्किंग वीमेन्स को स्टडी किया तो हमारे सामने कुछ अजीब और रोचक तथ्य सामने आए। जब हम एक घरेलू महिला के घर जाकर हमने उसको स्टडी किया, उसके काम को स्टडी किया, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठना, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, दोपहर उसके बाद बर्तन साफ करना, उसके बाद झाड़ू पोछा करना, फिर दोपहर का खाना बनाना, उसके बाद फिर बर्तन साफ करना, शाम की चाय बनाना, और उसके बाद रात का डिनर बनाना, और उसके बाद सबको खाना खिलाना, और एंड में 10-11 बजे सबसे बाद खाना खा के फिर आप खुद सोना। जब हमने उसके काम की इसकी वैल्यू निकाली, और जो गाँव में काम करती है सुबह और शाम, गाँव में शायद कुछ महिलाएं भैंसों के लिए भी काम करती हैं, उनके उनके खेत में भी काम करती हैं, उस पूरे काम की कोस्ट हमने जब निकाली, एक नॉन वर्किंग वुमेन के काम की कोस्ट एक महीने की 40,000 रुपए थी। ये हमने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सबमिट किया और अपने किताब में भी इसको मेंशन किया, यानी कि 40,000 रुपए का काम करते हैं वो वुमेन और क्रेडिट बिल्कुल हमारे परिवारों में नहीं मिलता।
0: कहा जाता कि वो कुछ नहीं करती,
1: बिल्कुल उस काम की कोई उनको प्रेज प्रशंसा उनको नहीं दी जाती, लेकिन इतना कॉस्टली काम, इतना आप कह सकते हो कि ऐसा कार्य है जो सारा दिन बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, और उसकी 40,000 रुपये कोस्ट, जबकि हम मान लीजिए नमक कभी ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा होगी, हम कह देते हैं आज तो बहुत ज़्यादा नमक है, मिर्च ज़्यादा है, लेकिन सुबह से शाम तक जो उसके द्वारा काम किया गया है उसकी वैल्यू और उसकी प्रशंसा हम नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। हमने अपनी पुस्तक के माध्यम से उन सभी नॉन वर्किंग वीमेन, हमारी बहनों को, माताओं को, वो एक उनके समाज के सामने उनकी पिक्चर रखने की का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो अपनी मेहनत सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, और कोई संडे नहीं है। वर्किंग वीमेन के लिए संडे है लेकिन नॉन वर्किंग वीमेन के लिए कोई संडे नहीं है, 7 के 7 दिन लगातार अपने काम में सुबह से शाम तक वो लगी रहती हैं। हमारी उन माताओं बहनों को सलाम, हमने अपनी किताब के माध्यम से उनको एक सम्मान देने का प्रयास किया है।
0: डॉक्टर साहब, हम भी कई कार्यक्रम इस रेडियो विदस्ता के माध्यम से करते हैं जो महिलाओं के ऊपर आधारित है। एक कार्यक्रम हमारा है नारी एक दर्पण, हमने यही कोशिश उस कार्यक्रम में भी की है कि हर कोई व्यक्ति बराबर है, पर कई बार हम शायद महिलाओं को इग्नोर करते हैं। तो हमने उसमें ये कोशिश की है कि उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के इस देश को, अपने परिवारों को आगे लेके गए हैं। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम है नारी और सम्मान। हमारी भी कोशिश है, जो आप कोशिश करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा देश महिलाओं के बगैर पूरा नहीं होता। तो उनको वो अवसर मिलने चाहिए और वो उनका वो स्थान मिलना चाहिए जो उनका जीवन में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सर बधाई भी और साधुवाद भी देता हूं कि आप ऐसे विषयों पर काम करते हैं शायद जिन विषयों पर बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गुंजाइश एक और गाने की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा सा आप अपने कॉलेज समय की तरफ चलें, और उस समय क्योंकि वातावरण ऐसा होता है, आजाद सोच होती है, आजाद ख्याल होते हैं, तो उस समय कैसा माहौल रहा होगा, कौन सा गाना आप उस समय सुनते होंगे, वो हम चाहेंगे कि आप बताएं और हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: हाँ जी, जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था तो मेरा शुरू से ही सॉन्ग की तरफ कम रुझान था। मैं अधिकतर न्यूज़ देखना, पढ़ना और अलग अलग इवेंट्स करना अच्छा था, लेकिन मैं एक सॉन्ग अपनी पत्नी पूजा को डेडिकेट करना चाहूँगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, तो प्लीज सुनो आ जाए।
0: आइए श्रोताओं, हम आपको डॉक्टर साहब का ये पसंदीदा गाना सुनाते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, और ये गाना डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी पूजा जी को डेडिकेट किया है। हमें

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और आज हमारे साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम मानव अधिकार की बात कर रहे थे, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हमें हर सुविधा देनी चाहिए, तो क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमारे समाज में, बहुत सारे जिन पर हमें दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। जैसे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, या विकलांग लोग हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, हमें और समाज और सरकार सबको एक बार सोचना चाहिए। स्वस्थ जीवन है सबके पास, और हर इंसान या मानवता स्वस्थ जीवन की कल्पना करता है। जो स्टूडेंट डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, मैं उन संस्थाओं को भी धन्यवाद करूंगा। मैं अंबाला कैंट की संस्थाएं हैं, जैसे इनर व्हील क्लब है, दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, जो समय समय पर एल्डर फॉर्म है, ऐसे जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, उनको समय समय पर आर्थिक मदद देते हैं, उनको टीचर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो भी एक अपना सम्मानित जीवन जी सकें। सरकार भी कुछ ग्रांट देती हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन और उनके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्रयास ज़्यादा आवश्यक। एक स्वस्थ मनुष्य अपना कार्य स्वयं कर सकता है और स्वयं अपना जीवन जी सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, उनको हेल्प की आवश्यकता है। जब तक हम उनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी मदद उनकी की जाएगी, तो वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा होंगे और अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करेंगे, मेरा मानना है।
0: यानी कि आपका कहना यह है कि बाकी संस्थाएं और सरकार भी अपना काम कर रही है, जब तक एक आम साधारण व्यक्ति उनके प्रति हेल्पफुल ना हो, तब तक काम नहीं अच्छे से हो सकता है। अगर सारे इस दिशा में सोचेंगे, तो उनकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिखी बुक्स बच्चों को एकेडमिक कोर्स के दौरान पढ़ाई जा रही हैं, कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं जब आपकी लिखी गई किताबें नई पीढ़ी को एकेडमिक रूप में पढ़ाई जा रही हैं, जो आपका मार्गदर्शन है वो उनको मिलता है, आपको कैसा महसूस होता है?
1: एक गौरव का अनुभव होता है। तो सबसे पहले मैं एकेडमिक बुक्स के लिए VK पब्लिकेशन है, और राहुल जी और रजत जी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि मेरी सभी एकेडमिक बुक्स को उन्होंने पब्लिश किया है। तो मेरा हमेशा जवाब रहता है कि जो मुझे आप देंगे, वो अपने मेरी बुक्स में से कम कर दें, ताकि बच्चों को सस्ती से सस्ती बुक ले। मैं कभी भी उनसे कोई पैसा मैंने नहीं लिया, और बुक से ही। अभी मेरी एक लेटेस्ट बुक आई थी BA फर्स्ट ईयर की, जो मैंने डिस्कस किया था, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, 180 पेज की बुक्स है, और मैंने अपने जो मुझे उन्होंने देना था, उसमें मैंने रॉयल्टी कम की, और आज बच्चों को 115 रुपए में 180 पेज की बुक मिल रही है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बुक हर बच्चे तक पहुंचे, उसका लाभ बच्चे ले सके, तो मेरा ये प्रयास रहता है।
0: जो आप कॉलम्स लिखते हैं, क्या इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर होता है, या समाज की पीड़ा को आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं?
1: देखिए, कोई भी कॉलम

0: जो वर्तमान में समस्या चल रही है, हमारा समाज इस समस्या को आज अनुभव करता है, तो मैं उन्हीं विषयों पर लिखने का प्रयास करता हूँ, कोई भी करंट विषय है। जैसे एक मैंने एक आर्टिकल कुछ दिन पहले लिखा था, और उसमें था कि बच्चों की दुनिया न उजाड़ें। आज हम अपने बच्चों पर इतना प्रेशर देते हैं कि आप 90% लेके आएं, 99% लेकर आएं, और कई सारे केस है तो ऐसे हैं जब इतना प्रेशर देने के बाद बच्चों ने सुसाइड किया है और बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 99 लेकर ही सफल होंगे। मेरे जैसा स्टूडेंट जिसके 60% 55% नंबर आए हैं, वो भी भगवान की दया से एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है। 50% लेने वाला बच्चा भी एक सफल हो सकता है, बिल्कुल एक मार्गदर्शक हो सकता है। तो हमें बच्चों को अधिक स्ट्रेस ना देकर उनके अनुसार हमें उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
1: मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, आप उन पेरेंट्स को और उन बच्चों के लिए इसी विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी पेरेंट्स को अपील करूंगा कि अपने बच्चों से बातचीत करें, उनकी कोई समस्या है, स्टडी की समस्या है, उससे बातचीत करें। उन पर अधिक नंबर लाने के लिए आप प्रेशर ना डालें। आप ये सोचिए कि आपका बच्चा किस विषय में ज्यादा अच्छा है, हम उसकी प्रेज करें। आप अगर आप उस बच्चे की प्रेज करेंगे तो बच्चा और भी अच्छा कर पाएगा। हम दबाव ना डालें, हम उसको प्रेज करें, हम उसके फ्रेंड बनकर उसको हेल्प करें, उसको मोटिवेट करने का प्रयत्न करें। जब हम उसको मोटिवेट करेंगे वो अच्छा कर पाएगा। लेकिन ये आप बिल्कुल ना सोचें कि 99% नंबर ही सक्सेस की गारंटी है, कम नंबर भी सक्सेस की गारंटी है। और आप अगर ऐसा करेंगे तो भगवान अच्छा करेगा और बच्चे भी सफल होंगे।
1: और बड़ी विनम्रता से आपने अपने आप को भी उन्हीं बच्चों में गिना जो 60% मार्क्स लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप इस समय हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं अपने पुस्तकों के द्वारा। आप एक ही विषय पे नहीं लिखते हैं, एक आपका विषय आया, एक कॉलम आपका आया, वो है ब्रिटेन में क्राउन का शासन है ना कि सम्राट का। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें?
0: देखिए, जब हम क्योंकि इंडिया में जब हम आजाद हुए, हमने भारत का संविधान बनाया, हमने अधिकतर ब्रिटेन के सिस्टम को ही फॉलो किया है, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी को हमने इंडिया में फॉलो किया है। हमने उस क्राउन को राष्ट्रपति की जगह दी भारत में, और वहाँ की पार्लियामेंट को हमने प्रधानमंत्री की जगह दी। तो हम इस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटेन का जो शासन है वो क्राउन का नहीं है, वो पार्लियामेंट का शासन है।
1: अच्छा,
0: आज जो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में क्राउन का शासन है, व्हाट इज ए, वो केवल एक नामात्र अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है वहां पर भी, तो वो सिर्फ एक नामात्र का शासन है। भारत आज राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका शासन भारत पर भी है। हम एक संवैधानिक रूप से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सिर्फ हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, हम किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के अधीन नहीं है। भारत प्रभुता संपन्न राष्ट्र है, अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मैंने अपने आर्टिकल के दौरान इस बात को क्लियर करने का प्रयत्न किया था।
1: ऐसे ही एक विभिन्न मसला है जिसके ऊपर आपने लिखा है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण सुरक्षा दिवस होना चाहिए।
0: देखिए, एक दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने से भारत या दुनिया का पर्यावरण की समस्या दूर नहीं होगी। हर दिन पर्यावरण दिवस है, हम सबको छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। हम सबको, हमें छोटे छोटे से रैपर हम कुछ खाते हैं नालियों में ना डालें, हम कॉलेजों में स्कूल्स में जा रहे हैं उसको रैपर्स को डस्टबिन में डालें। हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपना कूड़ा डस्टबिन में जाकर डालें। हम छोटे छोटे प्रयास करें तब हमारा देश स्वस्थ और स्वतंत्र हो सकता है, पर्यावरण की जो समस्या हमारी दूर हो सकती है। यदि हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तभी हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे। तो मैंने अपने आर्टिकल के दौरान पर्यावरण को कैसे बचाएं, एक दिन पर्यावरण दिवस नहीं, हर रोज पर्यावरण दिवस है, इसको मानेंगे तभी पर्यावरण की समस्या हम प्रदूषण की दूर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जितनी भी बातचीत हमने आपसे की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी काम में जब तक हम सारे देशवासी एक ना हो जाए, एक सोच के ना हो जाए, तो हमारे देश तभी आगे बढ़ा। जैसे आपने 2047 में आपने कहा कि ऐसा माना जाता है कि हमारा भारत देश विकसित होगा, तो अगर हम सब लोग मिलके इस देश के बारे में सोचें चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सोच का दायरा हो या पढ़ाई लिखाई का दायरा हो, तो हम 2047 में विकसित होने के पूरी तरह से दावेदार हैं। एक मुद्दा और है सर, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के माहिर हैं, तो क्या कहते हैं आप, ये हमारे देश के लिए कितना जरूरी या गैर जरूरी है?
0: देखिए, हमारे कंट्री के लिए कई सारे मुद्दे बड़े आज जरूरी हैं। सबसे पहले यूसीसी की बात आपने की, और उसके साथ पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र में एक और कानून की आवश्यकता है। हमारे जनसंख्या नियंत्रण पर भी भारत में कानून होना चाहिए, ताकि 142 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है, विश्व में आज सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री भारत बन चुका है। तो सरकार को एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई ना कोई कानून लाना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून होगा, तो यूसीसी जैसे जो कानून हैं वो खुद भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और यूसीसी, जब भारत एक सभी धर्मों के लिए समान कंट्री है, सभी धर्मों के लिए एक संविधान है, सभी लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए एक संविधान है, तो मेरा मानना ऐसा है कि यूसीसी जैसा कानून भी होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को समान समझा जाए।
1: एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, युवाओं के लिए प्रेरणा है शहीद उद्धम सिंह की कुर्बानी, तो क्या हमारे देश में हमें बार बार बच्चों को या बाकी देशवासियों को यह समझाना पड़ेगा कि हम सब के लिए देश सर्वोपरि है?
0: देखिए, आज विश्व में जो भारत की स्थिति है
1: जी,
0: या भारत किस रास्ते पर कहां तक पहुंच चुका है, यदि हम उस पर नजर डालें, तो शहीद भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, इनकी कुर्बानियों से हमें प्रेरणा लेकर हमें स्वयं प्रयास करें। हम सरकार की तरफ हर विषय के लिए ना देखें, स्वयं प्रयास करें, अपने राइट्स के लिए प्रयास करें, अपने आर्थिक विकास के लिए प्रयास करें। संघर्ष केवल आजादी का है, उन्होंने हमें दिलवा दी, आज आजादी का संघर्ष नहीं है, आज संघर्ष है जीवन सफलतापूर्वक जीने का, राष्ट्र का मान बढ़ाने का। तो हमें उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।
1: अंत में मैं यही कहूंगा डॉक्टर साहब की जो आज हमने ये चर्चा की, ये बहुत ही सार्थक रही, और इसका सार तो यही है कि हम सारे देशवासी जब हर विषय पर एक जैसी सोच रखेंगे, तो हमारा देश सबसे सुदृढ़ और स्ट्रांग होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ ले आए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। निर्णय हम जनता पर छोड़ देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: धन्यवाद, जय हिंद।
1: आपको डॉक्टर साहब के एक बहुत ही अच्छे गीत के साथ छोड़ देते हैं, जो है मोहब्बत जिंदाबाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे डॉक्टर जगदीप सिंह, रिकॉर्डिस्ट सेजल पुंज, एडिटिंग दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

वो कौन था जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए,

और दौराने सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही।

0: बंद कमरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

ख्वाब थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गए सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे शायद।

ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हम कोशिश करते हैं उन कार्यक्रमों को प्रसारित करें जो रखें आपसे सरोकार। आज के दौर में बहुत सारी आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है, पर हमारी कोशिश है कि जो हमारी आवाज आप तक पहुंचे वो आपके दिल तक पहुंचे, दिल के नजदीक पहुंचे और आपको एंटरटेन भी करें। और आशा करते हैं कि जैसे आपका प्यार हमें मिल रहा है, ऐसा प्यार आपका बना रहेगा। और उन श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। और साथ में हम हमेशा कहते हैं, अगर आप अंबाला के जनता को, अंबाला के लिसनर्स को, अंबाला के हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव से कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप अपने बारे में भी हमें लिखें हमारे स्टूडियो के नंबर पर। हम आपको आमंत्रण देंगे और आपकी बात हम रिकॉर्ड कर सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। हम हैं सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, जिसका लाइसेंस भारत सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से मिला है अंबाला की जनता के लिए। और हम बात करते हैं अंबाला की और अंबाला के लोगों की। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:40। शब्दों का ये सफर आज फिर अपने पड़ाव पर पहुंच गया है। जी चाहता है कि थोड़ा और लंबा चलें, पर वक्त की अपनी एक रफ्तार होती है। उम्मीद है इतनी देर का साथ आपको भी अच्छा लगा होगा। हर दिन हम किसी खास विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प विषय पर, और आज का विषय है अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहना ही असली आजादी है। हम अक्सर अपनी खुशी का पैमाना दूसरों के व्यवहार, उनकी राय या हालात पर टिका देते हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर ये हो जाए तो मुझको सुकून मिलेगा। लेकिन जब तक हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में रखते हैं, तब तक सच्चा सुकून मिलना मुश्किल होता है। सच्ची खुशी वो है जो हमारे अपने भीतर से उपजे, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर हो। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, वो हालात बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने नजरिए को बदलता है। छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढना, अपने शौक के लिए समय निकालना और अपनी भावनाओं को समझना, ये सब हमें भीतर से आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम खुद अपनी खुशी का स्रोत बन जाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती है। दोस्तों, आइए हम सब सीखें कि अपनी खुशी की डोर अपने ही हाथ में रखें, क्योंकि जो खुद से खुश रखना जानता है, रहना सीख लेता है, वही सच में परिस्थिति में संतुष्ट और शांत रह पाता है। यह था आज का विषय, और हर दिन की तरह 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, और आज की पंक्तियां आप सभी के लिए है, खुशी की चाबी किसी और के हाथ मत सौंपिए। खुशी की चाबी किसी और के हाथ मत सौंपिए, अपने भीतर के सुकून को खुद पहचानिए। खुशी की चाबी किसी और के हाथ मत सौंपिए, अपने भीतर के सुकून को खुद सौंपिए। वितस्ता भी तो अपनी ही धारा में मस्त बहती है, यही सिखाती है आनंद खुद में ढूंढना सीखिए, ये था आज का विवरण और आज के पंक्तियां, और देता हूं आपके कल के कार्यक्रमों की जानकारी। कल 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनते हैं भक्ति संगीत। 7:05 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6 सुमन कल्याणपुर पर तैयार किया गया, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30
किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 19 आप सुन पाएंगे, बच्चों को सवाल पूछने की आजादी। इस विषय पर हम कल आपसे बात करेंगे 8:30 बजे सुबह। 9:30 बजे होगा कार्यक्रम पहला प्यार, एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10:10 पर फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 बजे भक्ति संगीत आप सुनेंगे, 6:30 बजे शाम में गजल, और 7:00 बजे फिल्मी किस्से एपिसोड 7। कल के लिए हमने फिल्म चुनी है चलती का नाम गाड़ी, पेश करेंगे राहुल अलियान। 8:30 बजे कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है मिले जुले गीत। ये था विवरण कल के कार्यक्रम का, और आशा करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे, अपनी जानकारी हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आप तक जो मैंने पहुंचाई, इसको तैयार किया था हमारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बातें तो बहुत थी पर वक्त की अपनी सीमा है। फिर मिलेंगे नई बातों और नई सोच नई आवाजों के साथ कल सुबह 5:58 पर। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए आज्ञा, लेता हूं विदा आपसे। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।